0: जिसे हम बोलते हैं वो बहुत बढ़ रहा है और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है। इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
1: ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर।
0: ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है और ये मैं डेडिकेट करना चाहूंगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे जमी पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे जमीन पर फिल्म का ये गाना।

0: मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण है. एक है जेनेटिक जो फैमिली से आता है. आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है. जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की. आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम ओबेसिटी. डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफी मात्रा में पाया जाता है. जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदि है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में या आप स्ट्रेस ले रहे हैं. मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें. तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं. आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है.
1: डॉक्टर साहब, फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है.
0: डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा. ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है. अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो.
1: ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी. अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं. कितना सहमत है आप?
0: ये एक बिल्कुल सही बात बोली. देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ, ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है. ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है. कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है वहाँ पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफी बढ़ गया है युवाओं में. स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है. ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले. मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, 1 कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो. बीच में जो दिमाग है उसको, बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो
1: जी.
0: क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी सारी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है.
1: ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से, कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया, तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए
0: जी. डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है. डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर
1: जी.
0: ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है. लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी इसके कारण मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है. डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं. सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर. आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को आगे जाके दिखना बंद हो सकता है. डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं. तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही

0: गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है, तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है?
1: इसके कारण

0: हो सकता है, बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में। स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज्यादा है। तो हम जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं, तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे है उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है।
1: हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पत्तलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है।
0: डायबिटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमजोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज के जो मरीज है ये काफी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुट वेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफी बार एम्पिटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है, तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट।
1: लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए?
0: नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज्यादा टाइट शूज नहीं पहने और घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें।
1: इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है?
0: ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूंगा।

0: मैं जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए।
1: डायबिटीज ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखे, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे, थके हुए टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाद्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोन्ड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाद्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग योक, जो योक होता है, उसे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल, चर्बी ज्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं, आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज होने की संभावना है।
0: ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी।
1: यस।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा

0: जाता है, आप ले सकते हैं शुगर फ्री। तो व्हाट इज शुगर फ्री?
1: जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं पर इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, इस ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं पड़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके टू इंडल्ज।
0: तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है?
1: ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूंगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम।
0: आइए सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेश नुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है?
1: मैं आखिर में यही कहना चाहूंगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल

0: डिसऑर्डर है और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल।
1: इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
0: एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

0: आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।
1: तो दोस्तों ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके, खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए। चलते चलते आपको बता दें आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से। और अब आप कनेक्ट हो चुके हैं आकाशवाणी अयोध्या एफएम से 101.9 मेगाहर्ट्ज ट्यून करके, और देश और दुनिया में हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या एफएम को प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के जरिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है और नमस्कार आज आपके रेडियो मित्र अमरजीत की ओर से। अपने सुनने वालों को बता दें कि आज शाम 5:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा स्वास्थ्य संबंधी हेलो डॉक्टर, जिसमें आप कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं पर डॉक्टर राजेंद्र कुमार से बातचीत कर सकते हैं 7376804090 नंबर मिलाकर 7376804090। कॉल रिसीव करेंगे आपकी अमरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन करेंगे सरस्वती पाठक और कंट्रोल रूम से इंजीनियर रहेंगे जितेंद्र सिंह। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे युवा वाणी कार्यक्रम पहले।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: कार्यक्रम युववाणी लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त शिखा मौर्य। और दोस्तों, आप सभी प्रतिशत भाग महासागरों से ढका है, वहीं महासागर के ये विशाल जल स्रोत हमारी पृथ्वी के तापमान और मौसम चक्र को संतुलित रखते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और हमारी थाली में आने वाला भोजन, इस सब का संबंध भी महासागरों से ही है। चाहे अटलांटिक हो, प्रशांत हो या हमारा अपना विशाल हिंद महासागर, ये सभी हमारी पृथ्वी के जैव विविधता के सबसे बड़े केंद्र हैं। वहीं मित्रों, विश्व महासागर दिवस के इतिहास की बात करें तो सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में ग्लोबल फोरम के दौरान इस दिवस का प्रस्ताव रखा गया था और 8 जून 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ल्ड ओशियंस डे के रूप में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य समुद्रों व महासागरों को मानवीय गतिविधियों से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक करना है। क्योंकि दोस्तों, समुद्र केवल मछलियों या विशालकाय जहाजों का घर नहीं है, बल्कि यह हमारे जीने का आधार भी है। लेकिन दोस्तों, जिस महासागर ने हमें सदियों से जीवन दिया, आज वही गंभीर संकट में है और हमारी आधुनिक जीवन शैली व लापरवाही से हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा नदियों के रास्ते हमारे महासागरों में पहुंच रहा है, जो हजारों समुद्री जीव, कछुए और मछलियों के लिए जानलेवा है। इसके अलावा बढ़ते जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और हमारी मूंगा चट्टानें भी नष्ट हो रही हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि एक नागरिक या छात्र के रूप में हम क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है। सबसे पहले हमें अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा और अपने आसपास के कचरे को कूड़ेदान में डालना होगा, ताकि वह बहकर नदियों व समुद्रों तक न पहुंचे। वहीं जब भी किसी समुद्री तट पर जाएं, तो वहां गंदगी न फैलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, क्योंकि जल ही जीवन है और महासागर इस जल के सबसे बड़े स्रोत हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2026 में विश्व महासागर दिवस की थीम है हमारी जानी पहचानी दुनिया से परे, हमारे महासागर के साथ एक नया संबंध, जो इस बात को बताता है कि महासागरों को केवल संसाधनों का भंडार मानने के बजाय हमें उनका रक्षक बनना होगा। दोस्तों, आइए इस सुंदर नीले ग्रह के रक्षक बने, साथ ही समुद्र की लहरों को फिर से स्वच्छ बनाएं और पृथ्वी को हरा भरा रखें। मित्रों, ये थी चर्चा विश्व महासागर दिवस पर और इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग। फिल्म है मौसम, लिरिक्स है इरशाद कामिल का, कंपोज किया है प्रीतम ने और गाने को प्यारी सी आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने।

दोस्तों, अभी आपने सुना फिल्म मौसम से ये गीत, और आइए आप कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं जहां करियर गाइडेंस सेगमेंट में जानते हैं करियर के विविध आयाम। वार्ताकार हैं बाबा बरुआ दास, पीजी।

0: डेंस सेगमेंट में जानते हैं करियर के विविध आयाम। वार्ताकार हैं बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार। भेंट करता है जीनत।
1: नमस्कार श्रोताओं, युवाणी के विशेष सेगमेंट करियर गाइडेंस में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त जीनत। दोस्तों, जीवन में सही करियर का चुनाव केवल एक निर्णय नहीं बल्कि हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम होता है। आज के समय में युवाओं के सामने अवसरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और सही जानकारी और अपनी क्षमताओं की पहचान सफलता की राह को और आसान बना देती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे करियर के विविध आयाम इस विषय पर। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज परुईया आश्रम अंबेडकर नगर के वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, तो हम बात यहाँ से आरंभ करना चाहेंगे कि करियर की क्या परिभाषा आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे।
2: देखिए, करियर की परिभाषा जो है, एक व्यक्ति है, करियर किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है
1: जी।
2: यह किसी भी इंसान की जीवन शैली का नेतृत्व करता है जिससे समाज में उसकी स्थिति निर्धारित होती है। जहां हर कोई एक अच्छी जीवन के सपने देखता है, वहीं हर कोई मजबूत करियर बनाने में सक्षम नहीं होता है। करियर आमतौर पर किसी व्यक्ति के जीवन के पेशेवर पहलू से जुड़ा होता है। करियर का चयन करना एक बड़ा निर्णय है और विडंबना यह है कि जब हम ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है तो हम इस तरह के निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जीवन हमको कैसा जीना है, आर्थिक, सामाजिक और
1: सब हमारे करियर पर निर्भर करता है। बिल्कुल सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि करियर के विभिन्न जो आयाम है वो कौन कौन से हैं।
2: देखिए, करियर के पारंपरिक आयामों में चिकित्सा है, इंजीनियरिंग है, शिक्षा, प्रशासन, कानून और बैंकिंग जैसे क्षेत्र प्रमुख रूप से रहे हुए हैं
1: जी।
2: डॉक्टर, इंजीनियरिंग, शिक्षक, वकील और सरकारी अधिकारी जैसे पेशे आज भी सम्मानजनक और लोकप्रिय माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में स्थिरता, सामाजिक प्रतिष्ठा और विकास की अच्छी संभावनाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल सर, और हमें ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि वर्तमान समय में कैरियर के कौन कौन से नए दरवाजे खुले हैं।
2: देखिए, वर्तमान समय जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का समय है और कैरियर के बहुत सारे दरवाजे इस टेक्नोलॉजी के युग में खुले हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं इसमें है, साइबर सुरक्षा, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, वेबसाइट डिजाइनिंग जैसे क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में कुशल युवाओं की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इंटरनेट और तकनीकी प्रगति ने रोजगार के अवसरों को वैश्विक स्तर तक विकसित कर दिया है। हमारे युवा अब ये बाध्य नहीं है कि हम अपने देश में ही आकर के कोई कार्य करें। पूरा विश्व एक ग्राम है, पूरा विश्व खुला हुआ है और किसी भी देश में जाकर के वह कोई भी कार्य कर सकता है। ऐसा अवसर इसके पहले कभी उपलब्ध नहीं होता था। तो ये सब सारी चीजें पॉसिबल हुई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से।
1: बिल्कुल सर, और अब हम पढ़ते हैं रचनात्मक क्षेत्र की ओर, तो ऐसे में क्या रचनात्मक क्षेत्र में करियर की संभावनाएं हमारे श्रोताओं के सामने, युवाओं के सामने है, हमें बताइए।
2: देखिए, रचनात्मक क्षेत्र में जैसे पत्रकारिता हो गई, लेखन है, बहुत सारे लोगों की रुचि लेखन में, कहानियां पढ़ते हैं, कहानियां लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, फिल्में लिखते हैं, शॉर्ट नाटक लिखते हैं, ये सब सारे काम करते हैं। फिल्म निर्माण है, फोटोग्राफी है, बहुत अच्छे लोग फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग है, संगीत है, नृत्य है, अभिनय जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अपार संभावनाएं हैं। आजकल देख रहे हैं यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सारे चैनल्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया के चैनल्स चल रहे हैं, बहुत सारे युवक युवतियां जो है उसमें अपने वीडियोज डाल करके
1: प्रतिभा
2: दिखा रहे हैं और ग्रामीण टैलेंट उसमें दिख रहे हैं कि गांव में जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है वो भी अपना टैलेंट जो है उस सोशल मीडिया के माध्यम
1: हमारे सामने
2: और नई कहानियां, नई स्टोरीज और एजुकेशनल स्टोरीज हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे इसमें वे अपनी पहचान बना रहे हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास से कंटेंट क्रिएशन को भी एक लोकप्रिय करियर बना दिया है। आज अनेक युवा यूट्यूब, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से सफल करियर बना रहे हैं और अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर बन रहा है या नाम हो रहा है, नाम के साथ साथ आर्थिक उन्नति भी उनकी हो रही है।
1: तो अब बात करते हैं हमारी आधी आबादी महिलाओं की भी, क्योंकि उनकी उन्नति के बिना भी विकास संभव तो है
2: बिल्कुल,
1: नहीं
2: बिल्कुल।
1: तो आगे बात करते हैं कि हमें ये बताइए खेल जगत और उद्यमिता के

0: क्षेत्र में महिलाएं और पुरुषों के लिए कौन कौन से नए आयाम हैं करियर के जो विकसित हो रहे हैं?
1: खेल भी एक करियर का एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। खेल में भी हमारे करियर की अपार संभावनाएं हैं। खेल जगत महिला एवं पुरुष दोनों ही क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, एथलेटिक्स तथा अन्य खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त खेल प्रबंधन, फिटनेस प्रशिक्षक, स्पोर्ट्स पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। दूसरी तरफ उद्यमिता, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, भी आधुनिक करियर का एक सशक्त आयाम है। आज अनेक युवा स्वयं का व्यवसाय शुरू करके रोजगार दाता बन रहे हैं। स्टार्टअप संस्कृति ने नवाचार मतलब इनोवेशंस और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। सरकार द्वारा भी इसको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नए युवा और युवतियां जो भी हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो अपना नया स्टार्टअप, नया एंटरप्रेन्योर विकसित कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जो है आर्थिक रूप से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं, आर्थिक मदद भी कर रही हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही हैं और उसके साथ संसाधन भी उपलब्ध करा रही हैं। तो ग्रामीण अंचल में लोगों में ये उत्साह बढ़ा है, खासकर महिलाओं में उत्साह बढ़ा है कि आत्मनिर्भर बन करके ही हम अपने समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, और हमें ये भी बताइए कि करियर के चयन में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, करियर का चयन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि पूरी लाइफ हमारी इसी पर निर्भर करती है। तो करियर का चयन करते समय हमें सबसे पहले अपनी रुचि पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, हमारी योग्यता क्या है, हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है। जीवन के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सही करियर वही है जो व्यक्ति को संतोष, आत्मविश्वास और निरंतर प्रगति का अवसर प्रदान करे। इसके लिए उचित मार्गदर्शन, कौशल विकास और निरंतर सीखने की भावना। देखिए, निरंतर सीखने की भावना जो है ये करियर में का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अगर आपके अंदर जानने सीखने की जिज्ञासा है तो आप कभी भी किसी भी मोड़ पर करियर में आप फेल नहीं हो सकते हैं, कोई भी आपको डिफीट नहीं कर सकता है
0: और काम से आप बोर भी नहीं हो सकते।
1: हाँ, काम से आप बोर भी नहीं हो सकते हैं और यह प्रवृत्ति जो है निरंतर सीखने की जो प्रवृत्ति है ये आपके अंदर नई ऊर्जा का भी संचार करती रहती है कि हम नई से नई चीजों को जाने, समझें और भविष्य का आकलन भी करें कि भविष्य किस तरफ करवट बदल रहा है, किस तरफ जा रहा है और हमको अपने में क्या चेंजेस करने चाहिए।
0: हमारे श्रोताओं को अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि करियर के प्रति बहुत ज्यादा आप निराशाजनक ना हो, आशावान बने और जीवन बहुत लंबा है। करियर का चयन करने के लिए आप बहुत सोच समझ करके, अनुभवी व्यक्ति से परामर्श ले करके, अपने जो सकारात्मक संदेश देने वाले जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके संपर्क में रहें। जो मोटिवेशन आपको वहां से मिलता है वह आपके करियर के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नकारात्मक लोगों से थोड़ा सा दूर रहें क्योंकि नकारात्मक लोग जो है वह मन को जो है दुखित करते हैं और कहीं ना कहीं आपको मार्ग में जो है बाधा भी पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात कही सर आपने और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा साथियों को आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, जरूर ही वो इसको ध्यान में रखेंगे और इससे सीख लेंगे।
2: मित्रों, अभी आपने जाना करियर गाइडेंस सेगमेंट में करियर के विविध आयाम। वार्ताकार थे बाबा बरुआ दास पीजी कॉलेज में वाणिज्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार और भेंटकर्ता थी जीनत। दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

0: भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान प्रोडक्ट सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: अंतराल के बाद आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है, और इसी के साथ अब चलिए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से दिशा पांडे की बातचीत।
4: तो दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं अपने श्रोताओं के बीच में, और हर बार हम बाहर जाते हैं अपने श्रोताओं से मिलने के लिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हर बार तो हम स्टूडियो में रहकर ही अपने दोस्तों से बात करते हैं और कभी मिलने का मौका नहीं मिलता। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूरा कर रहा है, और इससे रिलेटेड हम अपने श्रोताओं से बात करने वाले हैं कि इस 90 वर्ष के सफर में आकाशवाणी रेडियो को लेकर उनका अनुभव कैसा रहा, उनके पास क्या कोई दिलचस्प किस्से हैं, क्या ऐसा उनका फेवरेट प्रोग्राम रहा है जो कि सुनने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्यारी से दोस्त से, जिनका पहले नाम जानेंगे। अपना नाम बताइए।
5: प्रियांशी सिंह।
4: तो प्रियांशी जी, आप बताइए, रेडियो को सुनना आपको कितना अच्छा लगता है?
5: रेडियो सुनना अच्छा लगता है मुझे, पर बचपन में सुना है, अभी थोड़ा लैक ऑफ टाइम की वजह से थोड़ा सा रेडियो से डिस्टेंस हो गया है, बाकी अच्छा लगता है सुनना।
4: कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा रहा हो जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही हो आपके लाइफ की, जो आप शेयर करना चाहें?
5: मेरी लाइफ की तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, बस हाँ, मेरे पापा की लाइफ की ज़रूर है। वो बहुत रेडियो सुनते थे हमारे घर पे, अभी भी एक फिलिप्स का रेडियो है जो अभी तो नहीं बजता है, लेकिन हाँ, मैं अगर बात करूँ कि कुछ टाइम पुरानी तो ज़रूर बजता है। पापा अक्सर उसमें न्यूज़, क्रिकेट वगैरह सुना करते थे।
4: तो रेडियो सेट अभी भी आपके घर में है?
5: जी हाँ, मेरे घर पे फिलिप्स का रेडियो अभी भी है।
4: क्या बात है। तो आप अभी सुनते हो कि नहीं सुनते हो?
5: अभी तो वो वर्क नहीं करता है, लेकिन कुछ टाइम पहले करता था, पापा ने खरीदा था, वो पापा को बहुत पसंद था, अच्छा लगता था, तो वो रखा आज भी है, लेकिन काम नहीं करता है।
4: इस 90 वर्ष के सफर में आपने क्या क्या सुना जो आपको कुछ याद दिलाता हो या फिर आपकी मेमोरी बन गई हो?
5: मैं बचपन से ही, मतलब एक छोटी फैमिली बड़ी है लेकिन घर छोटा है, लेकिन क्या है ना कि ऐसा है कि मेरे पिताजी हमेशा, टीवी वगैरह नहीं थी बचपन से, हमने टीवी नहीं देखी थी, तो पापा हमेशा रेडियो सुना करते थे, तो हम अक्सर गाने सुनते थे एंटरटेनमेंट के लिए। कभी कभी बहुत बोर हो जाते थे तो पापा के पास रेडियो था, कभी वो घर पे नहीं होते तो हम लोग चुपचाप गाने सुना करते थे उससे।
4: क्या बात है। प्रियांशु जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।
5: थैंक यू।
4: तो दोस्तों, मैं अभी देख रही हूँ कि हमारे एक श्रोता जो है वो अभी भी रेडियो ऑन करके बैठे हुए हैं और रेडियो सुन रहे हैं। आपका नाम क्या है?
6: विजय मिश्रा।
4: आपका अनुभव कैसा रहा इस 90 वर्ष के सफर में रेडियो को लेकर?
6: रेडियो को लेकर बहुत अच्छा रहा, हम लोग बचपन में गाना सुनते रहते थे।
4: आप रेडियो कब से सुन रहे हैं, कितने साल हो गए आपको?
6: हो गए 30-35 साल।
4: ओ माई गॉड, 30-35 सालों से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं, क्या बात है। तो कोई दिलचस्प किस्सा बताइए जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी रही हो आपकी लाइफ की रेडियो को लेकर।
6: गाना सुनते रहते थे मैडम।
4: गाना सुनते रहते थे, और कोई प्रोग्राम?
6: प्रोग्राम नहीं, नदिया अखबार चलता रहता था, इसे सुनते रहते थे, लगा देते थे पुराने गाने सब।
4: तो अभी जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आप ड्राइव कर रहे हैं और साथ में आपने FM भी चला के रखा है ना, आकाशवाणी भी चलाया है, तो आपका ये अनुभव कैसा रहता है कि आप ड्राइव करते टाइम पे भी रेडियो सुनते रहते हैं?
6: अच्छा लगता है, टाइम पास होता है, नींद नहीं लगती है ड्राइव।
4: जी, आपका नाम क्या है?
7: हेलो, मैं अजय।
4: अजय जी, आप आकाशवाणी सुनते हैं रेडियो?
7: जी, आकाशवाणी सुनते हैं रेडियो।
4: कितने सालों से आप सुन रहे हैं?
7: मैम, 10-12 साल पहले जो है, हम लोग गाँव में जब पढ़ते थे तो उस समय हम लोग सुनते थे रेडियो। अभी तो समय की कमी के चलते हम लोग नहीं सुन पाते हैं, फिर भी कभी कभी समय निकाल कर छतों पर निकल जाते हैं सुनने के लिए, बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है।
4: तो 10-12 साल पहले अजय जी आप रेडियो सुनते थे, तो आपका

0: अनुभव क्या रहा है, कैसा आपको लगता था रेडियो सुनते वक्त?
1: 10-12 साल पहले मैम समय समय भी था, हम लोग पास पढ़ाई का समय था, न्यूज जैसे न्यूज सुनना है और ओल्ड सॉन्ग है, फरमाइशी प्रोग्राम है कब, और ज़्यादातर हम लोग जो है क्रिकेट कमेंट्री सुनते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था और बहुत सुकून महसूस होता था जब सुनते थे। कभी माइंड गड़बड़ हो तो फ्रेश माइंड फरमाइशी प्रोग्राम सुन लो, माइंड फ्रेश हो जाता था, बस यही सब था।
0: अच्छा, जब आप थोड़ा डिस्टर्ब होते थे तब आप सुकून के लिए रेडियो सुनते थे?
1: जी, ओल्ड सॉन्ग सुनते थे।
0: अजय जी, कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा रहा हो, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी लाइफ की रेडियो को लेकर?
1: था, पर अभी वैसा हम नहीं, मतलब याद नहीं क्या।
0: जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूरा कर रहा है इसी जून में, जो आपको हमारे श्रोता सुन रहे हैं, हमारे दोस्त सुन रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: हम कहना चाहेंगे कि जो है ये कभी भी स्ट्रेस महसूस हो या कभी कुछ ऐसा हो तो आप बिल्कुल सुनिए, सुनने से बड़ा अच्छा फील होता है, माइंड फ्रेश होगा, आप सुनिए तो आपको खुद समझ में आएगा। हमको भी बोलने का मौका मिला है आज, बहुत खास पल है, अच्छा है।
0: आपकी आवाज रेडियो पर जाने वाली है, आप 10-12 साल पहले सुनते थे, अभी कुछ सुकून चाहिए होता तब आप रेडियो सुनते हैं, तो अभी आपकी आवाज जाने वाली है रेडियो पर, फिर आपको कैसा फील हो रहा है?
1: बहुत खुशी फील हो रही है और जो है बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारी आवाज सभी श्रोताओं तक पहुंचेगी, सभी लोग सुनेंगे और ये बोलने का मौका मिला है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। धन्यवाद सभी को।
0: धन्यवाद अजय जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मित्रों, ये था आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से दिशा पांडे की बातचीत, और आइए अब चलते हैं हमारे अंतिम सेगमेंट रोजगार समाचार की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला रोजगार समाचार UP SSC से है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक्सेस कांस्टेबल के 722 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार UP SSC.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। मित्रों, अगली रोजगार सूचना CISS से है। इन्होंने ASI पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 24 पदों पर अधिसूचना जारी की है। वहीं आवेदन आज से ही प्रारंभ है और इसकी अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए cisfrect.cisf.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली सूचना है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से। इन्होंने एग्जीक्यूटिव के 70 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.hindustancopper.com पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगली रोजगार सूचना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन्होंने कोऑर्डिनेट ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। मित्रों, हमारी अगली सूचना है SSC से। कर्मचारी आयोग ने जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2026 है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। मित्रों, ये था सेगमेंट रोजगार समाचार, और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम में संतुलित खान पान की। दोस्तों, भीषण गर्मी में पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। हीट वेव के दौरान हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना है और अपनी थाली में क्या होना चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले और जरूरी बात, खुद को हाइड्रेट रखें। भले ही आपको प्यास ना लगी हो, लेकिन हर थोड़ी देर में पानी पीते रहें। वहीं लू से बचने के लिए सत्तू का सेवन भी बेहद फायदेमंद है। नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, शिकंजी का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाए रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन ही करें। वहीं चाय, कॉफी और मीठे कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये सभी पेय पदार्थ आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम से विदा लिया जाए। कल चर्चा होगी समुचित नींद में सहायक योग। भारतीय इतिहास से सेगमेंट में जानेंगे बिरसा मुंडा का आंदोलन, और कल है मंगलवार तो आप सभी का पसंदीदा सेगमेंट भी होगा चक्रव्यूह। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसी के साथ अपनी दोस्त शिखा मौर्य को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: अभी हमारे युवा साथियों ने युवावाणी कार्यक्रम सुना आकाशवाणी के अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज से। शाम के 5:30 होने जा रहे हैं, बस अब से कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे स्वास्थ्य संबंधी सजीव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज आप कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं पर डॉक्टर राजेंद्र कुमार से बातचीत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर रहेगा 7376 80 40 90, 7376 80 40 90। फोन कॉल्स आपकी रिसीव करेंगे अमरजीत सिंह, कार्यक्रम का संचालन करेंगी सरस्वती पाठक और कंट्रोल रूम से इंजीनियर रहेंगे विजय चौधरी। तो बस कुछ ही देर में सुनिए ये प्रोग्राम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। मैं हूँ सरस्वती पाठक और हमारा और आपका यह साथ बना रहेगा अगले 30 मिनट तक। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज का हमारा विषय क्या है, जिस पर आप हमारे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। हमारा विषय है आज का कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है पेट एवं गैस रोग विशेषज्ञ अयोध्या से डॉक्टर आर के बनौथा जी को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका स्टूडियो में।
5: मैडम नमस्कार, श्रोताओं, मैं डॉक्टर आर के बनौथा
4: जी। हम अपने सभी श्रोताओं को बता दें कि अगर आप हमारे डॉक्टर साहब से परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको डायल करना होगा नंबर 7376 80 40 90। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7376 80 40 90। इस नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर साहब से परामर्श ले सकते हैं। विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी बातों पर, तो सबसे पहले यही बताएं कि जो हमारा पाचन तंत्र है, हम भोजन ग्रहण करते हैं वहां से लेकर और उसको पाचन के बाद शरीर से मल के रूप में निकलने तक, एक प्रक्रिया क्या है?
5: भोजन लेने से पहले ही हमारे शरीर में पाचन का स्टार्ट की प्रक्रिया स्टार्ट, जब हम भोजन को देखते हैं
4: जी,
5: तो उसके रिफ्लेक्स से ही हमारे जो है मुंह के जो है एंजाइम है सिक्रीट होते हैं। तो खाना मुंह में जाए उससे पहले ही आपके आपका जो पाचन तंत्र है तैयार, दिमाग आपका तैयार होता है जब आप अच्छे अच्छे खाने देखते हैं
4: जी।
5: तो कहते नहीं कि खाने देख के मुंह में लार आ गए, वो लार एक्चुअली में पहले से तैयार होता है उस खाने को पचाने के लिए। तो जो हमारा खाने का पचने की प्रक्रिया हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है
4: जी।
5: तो मुंह में ढेर सा कई सारे एंजाइम होते हैं जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं। दूसरा चीज, खाना जो अपच की समस्या, आपने सब्जेक्ट की बात करी अपच, तो खाने के पूरी ऊपर से नीचे चबाने से लेके नीचे तक कहीं भी कुछ भी डिफेक्ट या कुछ भी कुछ परेशानी होगी तो ये अपच या कब्ज या जो भी चीज आप कह रहे हैं उसकी समस्या हो सकती है
4: जी।
5: तो जैसे हमारे जो पुरानी धारणा है कि खाने को खूब चबा के खाना चाहिए, जैसे बोलते ना कई बार 52 या 55 बार चबा के, एक निवाले को चबा के, तो जब आप खाने को अच्छे से चबाते हैं तो एक तो खाने को, खाना जो जिस रूप में भी खाते हैं वो एब्जॉर्ब होने के लिए, डाइजेस्ट होने के लिए बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, या तो प्रोटीन या फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट, ये बेसिक मेन यही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है
4: जी,
5: तो उसको ब्रेक डाउन करने की प्रक्रिया हमारे मुंह से शुरू होती है। तो जितना जितना हम उसको चबाएंगे और सलाइवा में जितना मिक्स होगा, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट कर देता है, मतलब जो खाने को तोड़ने का एक मोटा मोटा कहा जाए
4: जी। डॉक्टर साहब हम क्षमा चाहेंगे, हम अपनी बातचीत को यहीं से उठाएंगे, उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो
5: हेलो
4: हेलो, तकनीकी कारणों से हमारी बातचीत नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमें आशा है कि वो प्रयास करेंगे हमारे जो भी लिसनर थे जी। डॉक्टर टुकड़ों में बटने की बात कर रहे थे,
5: जैसे हमने बताया कि खाना देख के, आंखें जब उस खाने को देखती है ब्रेन उस पे एक्टिव होता है और वो अंदर से मुंह में

0: साइवा या कुछ चीजें जो एंजाइम जो खाने को पचा सकती उस खाने को
1: जी.
0: वो सिक्रेशन शुरू करता है. अब जैसे हम इतना एडवांस सिस्टम है हमारा डाइजेशन का, जैसे ही हम खाना चबा रहे होते और उसको यहाँ पर चल रहा होता उसको खाने को मिलाने में जो सलाइवा उसको मिलता है, उसी दौरान कुछ जो है हार्मोन निकल के आगे चला जाता है स्टमक में. वो बता देता है भैया खाना ऊपर तैयार हो रहा अभी आएगा, तो आप अपनी प्रक्रिया को तैयार करके रखिए.
1: हाँ.
0: तो उसमें कुछ एक HCL होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, कुछ एंजाइम होते हैं जो खाने को और आगे पचा सकते हैं, तो वो सिक्रेशन शुरू हो जाता है जब आप मुंह में करते हैं
1: जी.
0: तो
1: बातचीत जारी रहेगी डॉक्टर साहब, एक बार पुनः क्षमा चाहेंगे. हेलो
2: हेलो
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताए और फिर समस्या बताए.
2: मैडम हमारा नाम राम कुमार चौहान है.
1: जी राम कुमार जी बताइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
2: जी मैडम हमारी समस्या मैडम ये है कि हमको रात मतलब सुबह के टाइम बिल्कुल जो है एक ऐसे जलन टाइप की होती है जो है ये गले के पास में एसी टाइप का ऐसे जैसे उल्टी उल्टी होने लगती है.
0: ये कितने दिनों से हो रहा है? कितने दिनों से राम कुमार जी कितने दिनों से हो रहा है?
2: ये हो गए सर हम लगभग 3 महीने से ज्यादा हो गया.
0: ठीक है, इसे बात करते हैं. जो अभी राम कुमार जी ने बताई बहुत कॉमन सी चीज है, गैस एसिड या जो है रिफ्लेक्स इस तरह की चीजें हैं. तो इसमें जब जैसे भी जो हमने बताया अभी HCL स्टमक के अंदर पेट के अंदर एक एसिड सेक्रेट होता है HCL जो बहुत स्ट्रांग होता है, अगर आपको ऐसी स्किन पे डाल दिया जाए तो हो सकता है आपकी स्किन जल जाए
1: जी.
0: वो इतना स्ट्रांग एसिड होता है. अब स्टमक भी मांसपेशियों का बना होता तो वो उसको क्यों नहीं डैमेज करता, क्योंकि स्टमक के पेट के चारों तरफ कुछ लेयर होती है म्यूकोसा की जो उस जिससे उस मतलब ये HCL से उस प्रोटेक्ट करती है उस म्यूकोसा को
1: जी.
0: वो इतना वो इसलिए जरूरी है कि आपने जो खाना खाया है वो एसिड उसको अच्छे से पचा सके, उससे अच्छे से तोड़ सके माइक्रो पार्टिकल में, जिससे आपका खाना आगे एब्जॉर्ब हो सके
1: जी. बिल्कुल.
0: तो वो HCL का एक काम होता है कि खाने को बहुत अच्छे से बहुत बारीक महीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में तोड़े जिससे वो आगे एब्जॉर्ब हो. वो स्ट्रांग एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपको वैसे स्किन पे डाल दिया जाए तो फिर आपकी स्किन जल सकती है, पहली चीज. अब उसमें कभी कभी खाने पीने में गड़बड़ी की वजह से हम लोगों का कुछ ऐसी चीज जिसको खाने से वो ज्यादा सिक्रेशन होने लगता है
1: जी. राम कुमार जी को यही दिक्कत है जो वो बता रहे थे कि जलन होती है.
0: जलन होती है तो जब उसमें कहीं डिसबैलेंस होता, कहीं खाने पीने की गड़बड़ी की वजह से उसका सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, या आप उसमें आप पानी कम पी रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसी फैटी वाली चीज अधिक मात्रा में खा रहे हैं जो आपको जिससे उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है
1: जी.
0: तो भी वो एकदम आपको फीलिंग और उसका रिफ्लेक्स कभी कभी वो ऊपर आपके एसोफेगस या जो खाने की नली तक रिफ्लेक्स आने लगता है, जिसकी वजह से आपको जलन या इस तरह की चीजें महसूस होती है. उसके लिए करना क्या, आपको खाने के साथ साथ पानी का सेवन खूब करना. पानी का सेवन आप करते रहेंगे तो वो डाइल्यूट होता रहेगा
1: जी.
0: पहला चीज जो आप घर पे ही कर सकते
1: खाने के साथ साथ, मतलब जैसे बीच में पानी पीने से मना किया जाता है तो क्या हमें बीच में भी पानी पीना है?
0: बिल्कुल पी सकते हैं, पानी का कोई वो नहीं है कि पानी आपको शरीर में पीना है ज्यादा से ज्यादा. तो मतलब अगर HCL आपको एसिड का फील हो रहा ज्यादा हो रहा तो अगर आप पानी ज्यादा पिएंगे तो पानी भी काफी हद तक उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो एक ये चीज, अगर आपको बहुत दिन से बनी हुई चीज है फिर तो आपको फिर, क्योंकि कभी कभी वो वहां तक पर डैमेज कर देता, जैसे अभी मैंने बताया कि वो स्ट्रांग इतना एसिड इतना स्ट्रांग होता आपकी स्किन को, कभी कभी वहां म्यूकोसल मेम्ब्रेन में इन्फेक्शन या किसी वजह से डिसकंटिन्यूएशन होता जिसकी वजह से वहां भी वो जला देता घाव कर देता, इसलिए जिसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर कहते हैं वहां पर अल्सर बन जाता है
1: जी.
0: तो अगर बहुत लंबे समय से चीज है तो इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है आपका जो सिक्रेशन है ज्यादा हो रहा हो या कहीं भी खाने पीने की वजह से बड़ी चीजें हो रही हो जिसकी वजह से आपको पेट में अल्सर घाव सूजन या कुछ इन्फेक्शन होते हैं, पाइल वगैरह इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो उसके सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं जिससे पेट के अंदर घाव या इस तरह की चीजें हो सकती हैं. तो ये हो सकता है कि आपको इस तरह की चीजें, तो आप बेहतर होगा कि अपने पास के जो भी आपके चिकित्सक हों जिसके पर आप रेगुलर जाते हैं दिखवाएं और थोड़ी सी छोटी सी वो मेडिसिन लिखेंगे और उससे मुझे लगता है कि आपको लाभ होगा. अगर उसके बाद भी चीजें बनी है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए. एक अपर GI एंडोस्कोपी होता है, हम लोग एंडोस्कोपी करके देखते हैं कि उसमें कहीं H. pylori का इन्फेक्शन तो नहीं है, उसमें कहीं अल्सर तो नहीं, उसमें कहीं घाव तो नहीं है, उसमें बहुत सारा चीजें हो सकती हैं. कुछ लोग जो है बैड हैबिट होती है स्मोकिंग और टोबैको की, तो कभी कभी कैंसर तक की उसमें संभावना होती है. तो कैंसर
1: जी, राम कुमार जी को प्राथमिक तौर पर पहले पानी का इंटेक
0: हाँ, पानी इंटेक है और फैटी वाली चीज, स्पाइसी चीज, अनहाइजीनिक चीज, बाहर की चीज, ये सब अवॉइड करनी है। लंबे समय तक

0: खाली पेट नहीं रहना, स्लिप अच्छे रहना, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहे।
1: जी, हम लोग अपने बातचीत में कर रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में कि हमारे पाचन तंत्र में किस तरह से काम करता है। कोइंसिडेंस था कि हमारे जो कॉलर थे वो भी उसी से जुड़े समस्या से बातचीत उन्होंने किया। उसके आगे हम जानना चाहेंगे, फिर हमारा पेट जो है वो तैयार हो जाता है कि हम खाना ऊपर से आने के लिए।
0: अच्छा, पेट तैयार हो जाता तो कुछ जो जो ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चीज वहां पर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, उसके बाद जो है आता है फैट का डाइजेशन, वो आपकी छोटी आंतों में स्टार्ट होता है। तो जैसे पेट में वो चीज डाइजेशन चल रहा होगा, कुछ ऑटोमेटिक कुछ ऐसा सिस्टम है उसके कि हार्मोन जो है आगे कुछ पैंक्रियाज में चले जाते हैं, हार्मोन कुछ जो है ड्यूडनम में जाते हैं, तो वो कुछ कुछ ऐसे एंजाइम जो है सिक्रीशन, जो आंतों में सिक्रीशन होना है जिन एंजाइमों का, जो पैंक्रियाज का एंजाइम का सिक्रीशन होना है उनके लिए, जैसे आपने जब जैसे मैंने बताया कि मुंह में चबाते हैं तो मैसेज नीचे चला जाता है स्टमक के लिए, जैसे स्टमक में डाइजेस्ट हो रहा होता है
1: जी।
0: उसके कुछ मैसेजेस, कुछ हार्मोन आगे चला जाता है, वो आंत को तैयार करता है, पैंक्रियाज को एंजाइम सिक्रीशन के लिए तैयार कर देता है कि भैया अब जो है खाना आपके पास आने वाला है, जो भी जिसने स्टमक ने मुंह ने जो काम कर रहा था, सलाइवा ने करना था, जो स्टमक में एससीएल और एंजाइम ने करना था, अब आप की बारी आने वाली उस खाने को और पचा के और महीन पार्ट में, या जो चीज वहां अनडाइजेस्टेड रह गया उसको पचा के एब्जॉर्ब करना आपका काम है। तो वो सारे सिक्रेशन आंतों में होने लगता है। तो जैसे ही स्टमक से थोड़ा सा पच के या कुछ अनडाइजेस्टेड फूड जो स्टमक में नहीं पचते, जैसे फैट वैट है, तो वो ड्यूडनम में यानी कि आंत के छोटी आंत का भाग होता है, वहां पर जाके उसको पचने पचाने का काम और एब्जॉर्प्शन का काम वहां पर होता है
1: जी। अब कब्ज और अपच की बात करें, कहां से गड़बड़ी शुरू होती है जो ये समस्या को जन्म देता है, कब्ज और अपच?
0: देखिए, अपच एक बड़ा टर्म है, अपच में अपच एक बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें कब्ज भी है, डायरिया भी है, वॉमिटिंग भी। अपच एक कॉमन सा शब्द कि खाना हमें पच नहीं रहा, तो वो किसी रूप में भी उसको सिम्टम आ सकता है। कब्ज भी हो सकती है उसको, लैट्रिंग ज्यादा, डायरिया भी हो सकता है उसको, वॉमिटिंग भी हो सकता है उसको, पेट में डिस्कम्फर्ट होता। तो इनडाइजेशन एक ब्रॉड टर्म है और कब्ज उसका एक पार्ट है कि उसको इनडाइजेशन का जो है उसकी इनडाइजेशन में जो कब्जियत है वाला पार्ट है वो उसके साथ होता है
1: जी। कब्ज की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारे मोशन है वो एकदम सही होने चाहिए, तो कितने दिन या कितने टाइम तक मोशन ना हो तो हम मान के चले कि हमें कब्ज है?
0: नहीं, ये अलग अलग कंट्री में बताते, 2-3 दिन भी अगर मोशन नहीं हो तो उसे कब्ज नहीं माना जाता वेस्टर्न कंट्री में। हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर रोज 1-2 बार लैट्रिन नहीं हो तो उसको कब्ज, 1-2 दिन अगर कभी आपको कॉन्स्टिपेशन लैट्रिन नहीं हो रहा तो उसको कब्ज नहीं कहेंगे। अगर कंटिन्यूस इस तरह की चीजें आपको सिम्टम बना है तो वो एक है,
1: जैसे किसी एक टाइम में हो गया कि किसी को सुबह मोशन नहीं हुआ या एक दिन नहीं हुआ,
0: अगर एक दो
1: तो
0: दिन नहीं
1: हुआ
0: तो
1: पास
0: जाने की जरूरत नहीं, जाने की जरूरत नहीं। कभी हम लोग खाने पीने में ऐसा हम लोग फाइबर नहीं ले रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं उसकी वजह से भी हो सकता है
1: जी। आपको अगर लक्षण की बात करें तो जैसे आपने बताया कि अगर एक दिन पूरा ना हो तो एक लक्षण ये हो गया कि एक पूरा दिन ना हो तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्या लक्षण है जिससे हम समझ लें कि कब्ज की समस्या हो रही है? क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मोशन के लोग चाहते तो हैं लेकिन पेट कहते हैं साफ नहीं हुआ, या हमें एक बार होकर के हम आ गए हैं लेकिन फिर भी हमें दिक्कत बनी हुई है।
0: फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट डिफिकेशन हम लोग बोल देते हैं। कभी कभी होता क्या, देखिए हम लोगों का जो है खाने पीने में, अगर हम फाइबर डाइट प्रॉपर ले रहे हैं, पानी का ठीक से ले रहे हैं, कभी ऐसा अगर आप किसी के साथ भी हो तो पानी का अमाउंट बढ़ा दे जो ले रहा है, कभी कभी हम लोग नहीं पानी ठीक से पी पाए या खाने में ठीक से फाइबर डाइट नहीं जा रहा, तो 1-2 दिन कब्ज हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा तो पहला चीज ये कि आप अपने डाइट पे फोकस करें, जो फाइबर डाइट आपको ज्यादा लेने हैं जिससे आपको कब्ज नहीं रहेगा। फाइबर क्या होता है, जो आपके आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होता, आपकी आंतों में पड़ा रहता वेस्ट प्रोडक्ट, उसके साथ जो बाकी जो चीज मिला हुआ चीज सिक्रेशन उससे आसान हो जाता और वो पानी को एब्जॉर्ब करके बल्क हो जाता और वो आपको मल के रूप में बाहर निकल जाता है
1: जी। ये कब्ज और अपच जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब हमें कब्ज या अपच होता है तो और भी शरीर में क्या क्या दिक्कतें शुरू होती हैं, जैसे उल्टी मितली टाइप की, इस तरह की कुछ भी चीजें?
0: जैसे नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि जो अपच या इंडाइजेशन में एक कब्ज एक टर्म है कि उसमें कब्ज भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, डिस्टेंशन मतलब पेट फूलना भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब भी हम लोग कभी कभी खाने पीने में गड़बड़ी होती, खासकर जो है इसलिए हम लोगों को यहाँ बोला जाता है कि सलाद की मात्रा खूब अच्छे से लो, फाइबर डाइट बढ़ाओ, तो ये चीजें हैं। तो अगर किसी को भी कंटिन्यूस कब्ज बना हुआ है तो बहुत सारा कारण होता है कब्ज का, एक तो मतलब डाइटरी कारण के अलावा ही बहुत सारा चीज होता है। एंजाइटी आज की डेट में बहुत, अगर आपके स्लिप नहीं ठीक से है
1: जी।

0: तो भी आपको कब्जियत या डायरिया इस तरह की चीज़ें हो सकती, एंजाइटी बहुत स्ट्रेस में तब भी इस तरह की चीज़ें हो सकती। तो ये पूरा बॉडी का एक नेचुरल फिनोमिना है जो किसी भी उसमें ऐसे हो सकता है।
1: जी, हम अपने सभी श्रोताओं को एक जेंटल रिमाइंडर दे दें कि कार्यक्रम चल रहा है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मैं हूं सरस्वती पाठक और आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा जी। आप पेट एवं गैस रोग विशेषज्ञ अयोध्या के हैं। डॉक्टर, हमारा विषय जो है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर इस तरह की कोई भी समस्या हो तो आप हमारे डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। फोन नंबर है 7376804090 7376804090। डॉक्टर, हम बचाव कैसे करें इन सारी चीजों से जो हमें खासतौर पे कब्ज और अपच की हो रही हैं?
0: देखिए, जितनी भी डाइजेशन के रिलेटेड चीजें हैं इसमें मोर देन 80% चीजें आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करके बचाव कर सकते हैं। पहले चीज, खाने को बहुत धीरे धीरे, मतलब अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो बहुत जल्दबाजी में खाना नहीं खाने की कोशिश करें। जो हमारे पुराणों में भी लिखा है, खाने को अच्छे से चबा के खाएं, 52 या 55 बार, शायद मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है कि उसको इतनी बार चबाए। वो इसलिए चबाए कि जिससे जो उसका एंजाइम है मुंह के अंदर वो पूरा अच्छे से मिल जाए, जिससे उसकी पाचन की वो क्रिया हो जाए। तो खाने को अच्छे से चबा के खाएंगे तो ये सब चीजें, गैस या इस चीज की फीलिंग कम होगी, पहला चीज। दूसरा, खाने में हाइजीन का मेंटेन करके जरूर खाएं, कि मतलब कोई जो स्ट्रीट फूड अवॉइड करें जहां तक कर सकते हैं, है ना। जब बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, अदरवाइज स्ट्रीट फूड खासकर जो, क्योंकि बहुत सारा जो भी अनहाइजीनिक फूड है स्ट्रीट फूड, उसको अवॉइड करें। बहुत फैटी ऑयली चीज नहीं खाएं, भूख से थोड़ा सा कम खाएं। एक रोटी अगर कम खाएंगे तो भी, क्योंकि उसके ऊपर सभी, एक कॉमन सा चीज है, अगर किसी को पूरा फुल कैपेसिटी से उसको स्टमक को या लीवर को काम करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा कम खाना खाते हैं तो वो उस खाने को पचने में और उसमें आसान होता। तो थोड़ा सा आप 3 के बजाय 4 बार खाएं, कई बार करके खा सकते हैं, लेकिन अमाउंट थोड़ा सा भूख रहने दें, मतलब उसको पूरा फुल करके नहीं खाना खाएं। एक तो पहली चीज, खाने को अच्छे से चबा के खाएं, खाने को समय दे के खाएं।
1: जी बिल्कुल,
0: समय मतलब बहुत जल्दबाजी में नहीं खाएं, और जो है चबाएं खूब, और लंबे, बहुत लंबे समय तक खाली पेट ना रहें, खाने को पूरा भर पेट नहीं खाएं, थोड़ा सा कम खाएंगे तो ये इस तरह की वो चीज़ नहीं रहेगी। इसके अलावा खाना खा के तुरंत बेड पे नहीं जाएं, तुरंत लेट नहीं, खासकर शाम रात नाइट की बात करें, दिन में तो आदमी चलो काम वाम करने लगता है, खाना खा के तुरंत बेड पे नहीं जाएं, कम से कम आधा से 45 मिनट वॉक या कुछ भी एक्टिविटी करते रहें, जिससे चीज, जिससे खाना सेटल हो, जिससे कि हाइपर एसिडिटी की चीज़ें आपको कम होगी, स्ट्रेस कम से कम रहे। लड़के मेल में जो लोग स्मोकिंग या अल्कोहल इन सब चीज़ों से दूर रहें, और स्पाइसी चीज भी कम से कम लें, जैसे अचार, सिरका, ये सब भी बहुत कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सब समस्याएं कम से कम होंगी या नहीं के बराबर।
1: जी, खाने में जो अंतराल होता है, जैसे सुबह का नाश्ता है, फिर लंच है, उसके बाद फिर शाम को कुछ नाश्ता हल्का फुल्का हुआ, फिर खाने में कितनी कितनी देर का अंतर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसकी वजह से भी समस्याएं हो जाती हैं।
0: 2 से 3 घंटे में भी आप खा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, मतलब कम से कम 2-3 घंटे का तो गैप होनी चाहिए, लेकिन बहुत लंबा फास्टिंग नहीं होना चाहिए। हम 8 घंटा नहीं खा रहे हैं कुछ, या हम कुछ 12-12 घंटा नहीं खा रहे हैं, कभी कभी तो ठीक है, फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे यहाँ फास्टिंग का तो बहुत रोल है, आजकल साइंटिफिक भी हो जाए कि अगर आप लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं तो इवन आपका कैंसर भी ठीक हो सकता है। ये जो है अभी नया रिसर्च आया है कि फास्टिंग अगर लंबे समय तक लगातार आप 36-37 घंटा करते हैं, लगातार करते हैं, तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं फिर वो कैंसर सेल को भी खा जाती हैं, इसको हमारे लैंग्वेज में ऑटोफैगी बोलते हैं, कि जो है जो डाइजेस्टिव सेल है वो आपकी जो है कैंसर सेल को भी, कैंसर में होता ही है कि सेल ज्यादा बढ़ रही होती तो उसको भी रोकने का काम करती है।
1: जी,
0: तो फास्टिंग कहीं कहीं पे तो ठीक है, लेकिन जो अगर इस तरह से आप वो कर रहे हैं तो वो फिर गड़बड़ भी हो सकती है।
1: जी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत सारे लोग शुरू कर देते हैं, तो खाने का, कब्ज का और फिजिकल एक्टिविटी का क्या रिलेशन है?
0: बहुत रिलेशन, फिजिकल एक्टिविटी हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप रखते हैं तो आपको डाइजेशन में दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी हार्ट की प्रॉब्लम कम से कम होगी, जितनी भी परेशान, जैसे कहते नहीं खाना जरूरी है, उसको पचाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, कि जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपकी मसल्स, आपके स्टमक, आपके पेट, आपके हाथों, आपके लीवर को, सबको जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपका दिल भी तेज धड़कता है, ब्लड को बहुत प्रेशर से आपके लीवर के पास भी भेजेगा, आपके हाथों में भी भेजेगा, सब जगह भेजेगा।
1: जी डॉक्टर साहब, हम लोग अपनी बातचीत को जारी रखेंगे, उससे पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो,
2: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं फिर समस्या बताएं।

0: मैम, मेरा नाम गीता यादव है।
1: हाँ गीता जी, बताइए समस्या बताइए।
0: मैम, हमें खाना खाने को मन नहीं करता कभी कभी, और जब खाते हैं तो मतलब पलटी होने की समस्या बढ़ती है, और अरे मतलब मुंह में जैसे तीता तीता लगता है और चक्कर भी आ जाता है।
2: इनको भी थोड़ा सा हाइपर एसिडिटी की चीज सिम्टम जिस तरह की बता रही हैं, तो आप जैसा भी मैंने बताया लंबे समय तक खाली पेट ना रहें, थोड़ा थोड़ा देर पे 2-3 घंटे पे कुछ खा लिया करें। पहला चीज, बहुत मिर्चा खटाई अचार तेल मसाले की चीज को कम अवॉइड कर दें, अगर अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं लें तो अच्छा रहेगा। पानी का सेवन खूब करें, खाने में फल हरी सब्जी सलाद का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, और भूख से थोड़ा सा कम खाएं, अलग से तेल या उस तरह का इस्तेमाल कम से कम करें।
1: जी गीता जी, और कुछ पूछना है आपको? जी गीता जी, आपको डॉक्टर साहब से और कुछ पूछना है?
2: अगर इसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप नियरेस्ट अपने डॉक्टर को जाएं, वो कुछ जांचें कराएंगे, कुछ लीवर की जांच करा लेंगे, कुछ अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं। कभी कभी गपित की थैली में स्टोन या इन सब की वजह से भी बार बार आपको हाइपर एसिडिटी या इस तरह इंडाइजेशन की चीजें हो सकती है।
1: जी वो तो डॉक्टर से मिलने के बाद ही पता लगेगा, इसलिए हमें चिकित्सक से मिलना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर, कुछ विशेष परिस्थितियां होती है ना, जैसे कोई महिला गर्भवती है या बच्चों को बहुत कब्ज की समस्या रहती है क्योंकि वो दूध पीते हैं, तो बच्चों में जो कब्ज की समस्या होती है तो वो छोटे हैं, फाइबर्स तो ले भी नहीं सकते हैं, जो बहुत छोटे हैं 6 महीने से कम हैं, उनके लिए क्या करें?
2: जो भी 6 महीने से कम है उनको बार बार दूध पिलाएं, क्योंकि 6 महीने तक के बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना और कुछ भी ओरल नहीं देना होता
1: जी,
2: तो उसको दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, लिक्विड जाएगा शरीर में तो निकलेगा। और 1-2 दिन जैसे मैंने कहा, बच्चे भी अगर 1-2 दिन लैटिंग नहीं करें तो उसको कब्ज की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। रह गई बात जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके साथ दिक्कत है, क्योंकि जैसे पेट जो है जब बच्चे का बढ़ता है, जब वेट बढ़ती है तो वो थोड़ा सा स्टमक को भी दबाता है या कम करता है, तो उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी की। उनके साथ यही है कि खाने को मतलब गैप कम करें, मतलब उसमें जो है खाना ज्यादा नहीं खाएं, थोड़े थोड़े देर पे हर 2 घंटे पे कुछ खा लें उनको, तो उनके साथ अगर ये करते हैं, क्योंकि वो भी अगर ज्यादा खाएंगे तो नीचे से भी उसका बच्चे का की वजह से पेट जो फूला है वो स्टमक को भी दबाता है जब लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो उसमें कम खाना कई बार करके खाएं
1: जी। के लिए डॉक्टर साहब क्षमा चाहेंगे, एक और कॉल ले लें पहले, फिर बातचीत करते हैं। हेलो
3: जी मैडम, नमस्ते।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएं फिर समस्या बताएं।
3: मैम आशुतोष निषाद बोल रहे हैं। मैम काफी लेट करवा दिया, मैं इतने अच्छे डॉक्टर आए हैं, ज्यादा से ज्यादा सोचा हूँ कि कॉल लेनी चाहिए आपको।
1: जी जी नहीं, बिल्कुल आप कॉल करिए, हम तुरंत कॉल लेंगे। बताइए आशुतोष जी।
3: जी मैं डॉक्टर साहब को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहता
2: हूँ। नमस्कार नमस्कार सर जी, बताएं सर अपनी समस्या।
3: बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं पेट से संबंधित खाना, हम चाहे जितना खा ले, थोड़ा लेकिन मुझे जो है बहुत थोड़ा सा उतरता है और साफ नहीं उतरता है, और गैस की थोड़ा बहुत समस्या है, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत है,
2: ठीक है,
3: बल्कि पेट भी साफ होता है, तो इसका क्या कारण है और इसका विस्तार से बता दीजिए मुझको। यानी कि हमारे माता जी का इलाज जो है वो निर्मल हॉस्पिटल में चल रहा है, तो वहाँ भी मैंने एक बार दिखाया था, तो
2: फाइबर डाइट बढ़ाएं। अगर कब्ज की परेशानी है तो आप खाने में फाइबर का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज जो आपके शरीर में अब्सॉर्ब नहीं हो पाती, जैसे फल हरी सब्जी सलाद लीजिए आप रोटी में आप
3: जी। डॉक्टर साहब एक जानकारी बता सकूं कि जो है जब ये मतलब नहीं उतरता तो थोड़ा
2: बिल्कुल देखिए, अगर कब्जियत नहीं होगी तो एनएस के आसपास बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। एक तो
3: डॉक्टर साहब आप रेडियो पर बता दीजिए, हम फोन कट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
2: ठीक है, आप रिकॉर्ड करिए। देखिए जैसा कब्जियत आप जैसे मैंने पहले ही बताया, इसको पानी का सेवन आप बढ़ा दीजिए अगर आपको कब्जियत लगातार है। दूसरा काम कर सकते हैं आप, खाने में फल हरी सब्जी सलाद, गेहूं की दलिया खा सकते हैं, आजकल मक्के का कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं दूध के साथ, आप मिस्सी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चोकर वाली रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब घरेलू उपाय। मतलब फाइबर आपको ज्यादा लेना है, पानी आपको ज्यादा लेना है, तो ये समस्या कम से कम रहेगी। फल हरी सब्जी ये सब ज्यादा लेना है, साबुदाना ले सकते, जो भी फाइबर की चीज है उसको, उसका सेवन ज्यादा करें तो वो शरीर में जाएगा, तो उसमें जो आंतों में पानी को एब्जॉर्ब करेगा जिससे बल्क फॉर्म होगा और लैट्रिन आपका पेट साफ, आपको फीलिंग आप साफ होगी। इसके अलावा अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते तो ठीक है, नहीं तो फिजिकली कुछ सुबह उठ के चलेंगे फिरेंगे।

0: दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो वो भी आपको बहुत कब्ज में फर्क पड़ता है। तो ये दो काम भी कर लेंगे तो आपको राहत महसूस होगी।
1: जी आशुतोष जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, जो मौसम है, मौसम बदलता है तो लोग कहते नहीं मुझे तो ये पसंद है, मैं यही खाऊंगा, तो किस तरह से हमें अपना खान पान बदल लेना चाहिए?
0: खा सकते हैं खाने में कोई ऐसी चीज, जैसे मौसम गर्मियां हैं तो अभी भी कभी, खासकर जो इस समय जो एक इससे हट के बात करूंगा, हीट स्ट्रोक भी बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: जी बिल्कुल,
0: तो इतनी तेज टेम्परेचर में अगर कभी निकले तो पहले आपको हाइड्रेट ज्यादा करना, मतलब पानी आपको अधिक से अधिक, घर से कहीं भी निकले पानी किसी भी रूप में, चाहे वो जूस पी सकते हैं, पानी अनहाइजेनिक ना हो, मतलब पानी आपने आपको शरीर में खूब हाइड्रेशन ले, खूब पानी साफ पीपा के अच्छे से जूस फल जो आपको साफ सुथरा सही तरीके से मिलता है उसको ले। तो अगर इस तरह से चीज करेंगे खासकर इस मौसम में तो आपको कम से कम परेशानी होगी। जैसा मैंने कहा कि स्ट्रीट फूड अवॉइड करें, जो भी सड़क पे धूल लग रही पता नहीं कैसे उसमें इन्फेक्शन है क्या है, उन चीजों को अवॉइड करें। फैटी ऑयली चीजों को कम से कम लें, जो बहुत खासकर फास्ट फूड जंक फूड आजकल जो है बहुत ज्यादा, पिज्जा बर्गर ये सब चीजें हो गई हैं, इसको भी मिनिमम ओकेजनली कर सकते हैं, लेकिन बहुत उसको रेगुलर उसमें नहीं लें कि अगर हमने मील स्किप कर देते हैं चलो वो मंगा के रोज खा लें, इस तरह के लोग ऑफिस वाले लोग हैं, ऑफिस में वर्कर हैं, नहीं है खाना नहीं है तो पिज्जा मंगा लिए करें, तो इसको एकदम रेगुलर उसमें ना लें, ओकेजनली चल सकता है, लेकिन इसको जितना अवॉइड करें जंक फूड, जितना भी फैटी वाली चीज अवॉइड करेंगे तो उतना आपके डाइजेशन पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, आपके लिए सिस्टम के लिए अच्छा है।
1: जी डॉक्टर, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हमेशा के ही अवॉइड करनी चाहिए, जो विरुद्ध आहार हैं, जिनको हमें एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्या उनको खाने से भी हमारे शरीर में कब्ज और अपच जैसी चीजें हो सकती हैं?
0: नहीं, कोई ऐसा आहार नहीं है जो आप खा सकते हैं वो पच भी सकता है, तो कोई ऐसा, एक तो ये मिथ है कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए, मिथ है। आप खाने का अमाउंट और खाने की हाइजीन और इन सब चीज को ध्यान रखें।
1: जी डॉक्टर साहब, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कॉल लेते हैं। हेलो,
2: हाँ जी मैडम जी नमस्कार, गुरतेज बादल मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोल रहा हूँ जी।
1: जी जी बताइए।
2: जैसे कब्ज के और पाचन के बारे में बोल रहे हैं, तो पाचन के बारे में ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कैसे किसी को लीवर की समस्या या ओटीपी की समस्या हो सकती है, जैसे कि कब्ज के लक्षण होते हैं या तालापीलिया के लक्षण होते हैं, मैं सवाल का जवाब रेडियो के जरिए सुनूंगा, आपका धन्यवाद प्रोग्राम अच्छा पेश करने के लिए।
0: देखिए दो चीज बताई है आपने, कब्ज और पीलिया, पीलिया पीलिया की चीज बताई, पीलिया लीवर में की जो है कुछ चीजें होती है, उस सिक्रीशन अगर उसका ज्यादा हो रहा तो पीलिया बहुत सारा कारण होता है। आप जो है खासकर जो पंजाब साइड की बात करें तो अल्कोहल भी उस स्टेट में ज्यादा चलता है, तो अल्कोहल की वजह से भी लीवर में कुछ डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो है पीलिया या इस तरह की बढ़ने की संभावना रहती है। तो वो और कब्ज के लिए जो मैंने अभी सारी चीजें डिस्कस किया कि फाइबर डाइट और ये सब लेंगे तो कब्ज नहीं रहेगी, पीलिया अगर है तो पीलिया में फिर आपको खाने की चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, फैटी वाली चीज नहीं, अल्कोहल खास करके आजकल बहुत फैशन कल्चर में आ रहा है, वो चीज अवॉइड करेंगे तो आपको ये सब चीजें नहीं रहेंगी। कभी कभी कुछ इन्फेक्शन की वजह से होता है, कभी कभी गॉलब्लैडर स्टोन की वजह से भी पीलिया हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कह सकते हैं, कभी कभी कुछ और बड़ी बीमारी की वजह से भी पीलिया।
1: डॉक्टर चलते चलते एक वाक्य में हमारे सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें?
0: धन्यवाद। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपको फिजिकली एक्टिविटी बढ़ाना है और फल हरी फाइबर डाइट बढ़ाना है, ये दो काम करेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी, आपको डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़ेगा। फल में खासकर जो है हम लोग क्या बोलते हैं कि सेब या कुछ इस तरह की रोज अगर खाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है।
1: जी डॉक्टर आरके बनौधा जी, आप पेट एवं गैस रोग विशेषज्ञ हैं अयोध्या में, और आपने हमारे स्टूडियो में हमारे श्रोताओं के सभी इस परामर्श दिए, उनके श्रोताओं के जवाब दिए, उनके समस्याओं पर आपको सभी श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहायता दी विनोद कुमार चौधरी ने और उद्घोषक अमरजीत सिंह ने। इसी के साथ सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर से दीजिए सरस्वती पाठक को अनुमति। नमस्कार।
3: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
4: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
3: हरी आई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद,
4: फोन नंबर 9161867873।

0: इन से प्राप्त की जा सकती है।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सजीव स्वास्थ्य संबंधी फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। आकाशवाणी का ये अयोध्या FM है 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद दिल्ली से समाचार होंगे, पहले हिंदी में और 6:05 से अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचारों का थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: अमृत नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर।
1: श्रोताओं, हमें खेद है कि हम आपको किन्हीं कारणों से आकाशवाणी दिल्ली से समाचार नहीं सुनवा पा रहे हैं। दिल्ली से हमें ये कार्यक्रम प्राप्त हो रहा जिसे आप सुन रहे हैं।
2: असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
3: Moments like these will be remembered by one and all, present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
0: एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए चार गगनयात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
3: The proud family with a round of applause proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, flying captain, flying pilot in the Indian Air Force.
0: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
2: और अब विशेष दल चार पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई। घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्ती की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन लालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन लालरिन ओमा साइलो।
2: तालियों की कड़कड़ाहट के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साइलो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन साइलो को
4: अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, चौथी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
3: एंड नाउ Shaurya Chakra posthumously, a very poignant moment. The first chakra, Shaurya Chakra, going to Lance Dafadar Baldev Chand from the Armored Corps, coming forward to receive his wife and mother.
4: Lance Dafadar Baldev Chand, 19 September 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को

0: गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिर इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
1: Our honorable president walking towards the martyr's wife and mother to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling. Honor.
0: वीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत।
2: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य मरणोपरांत वीर चक्र लेने के लिए इस वक्त माननीय राष्ट्रपति के सामने।
0: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चेंगखम सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोर्टर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उपनिरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चिंगाखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोर्टर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद अब दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा
2: और अब माननीय राष्ट्रपति अपने आसन से नीचे उतरते हुए ये मरणोपरांत
0: कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की पूज्य माता श्रीमती चिंगाखम एवं मन देवी एवं पूज्य पिता श्री चिंगाखम बोबिन बिहारी सिंह।
2: ये कैसा अवसर है, इतना भावुक अवसर होता है जब शहीद सैनिकों के परिजन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और पूरा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है।
0: राइफलमैन सुनील कुमार, 4th बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री मरणोपरांत।
1: The next of the kin of rifleman Sunil Kumar posthumously coming forward to receive the Medal of Gallantry Veer Chakra, a poignant moment when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their
0: rifleman Sunil Kumar
1: and joy.
0: Sima Suraksha Bal ki 7वीं battalion ke saath sena ki samanvay tukdi ke roop mein Jammu kshetr ki ek seema chauki par tainat the. 7 mai 2025 सीमा पार से शत्रु द्वारा लगातार की जा रही भारी गोलाबारी के बीच चौकी की ओर बढ़ते दुश्मन के सशस्त्र पेलोड से उत्पन्न खतरे को भांपते हुए ये जाबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
1: The parents of rifleman Sunil Kumar awarding them the Veer Chakra posthumously. To the proud family saluting the mother for giving birth to such a brave heart.

0: कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, पहली बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
1: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
0: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही अपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां

0: दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से दो खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल।
1: ये आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आइए सुनते हैं शाम सुहानी प्रोग्राम में कुछ फिल्मी गाने। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म जंजीर का गाना।

0: पहुँचे अयोध्या के हर घर तक। तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहाँ हर शब्द पहुँचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ैया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: बोलो बेईमान की, बेईमान की।

0: आपका अपना प्यारा रेडियो चैनल आकाशवाणी अयोध्या, जिसके कार्यक्रम आप FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

ये पूर्वी लोकगीत आपने सुना, खोस के कमरिया में अचरिया, गोरिया चले मचर मचर, कमला प्रसाद, कमल और उनके साथियों की आवाज में। और अब श्रृंगार गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूर्णिमा की आवाज में, ये लोकगीत आइए सुने।

0: सन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: और ये लोकगीत कार्यक्रम के अंत में आप सुनने जा रहे हैं हरि प्रसाद यादव और साथियों से। ये आपको 12 मार्च सुनवा रहे हैं।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: गूंजे स्वर्गाओं के कार्यक्रम लोकगीतों का अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अयोध्या FM से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं सांध्य।

कालीन कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर 6:45 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: दीवाने।
1: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
0: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
6: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
7: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार
7: दिन में 3 बजे से आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
9: पंचों जय हिंद। आज के पंचायती में आप सबे पंचन की बहुत बहुत स्वागत है। भैया आप सबे यह समय का जो सुनत हो अपन एक पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत और हम ही आपके साथ है। एक बात मान के चलो भैया कि जैसे अपने स्वास्थ्य के बदे अपने सब है हमेशा सचेत रहा जाते है, वैसने अगर अपने फसल में कोने मेर के अपने सबका समस्या आवे वाली है, सबसे पहली बात अगर जाना जाए तो वह है माटी के जांच। अगर माटी के परीक्षण समय पे करवावा जाए, साथे साथे यह बात की जानकारी ली जाए कि वहमन कौन पोषक तत्व के कितना कमी है। भाई नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, तमाम 16 पोषक तत्व रहते हैं। उमन कौन पोषक तत्व के कितना कमी बाटे वह के प्रतिपूर्ति अगर अपने समय बुआई से पहले कैलिन जाए, जब अपन खेत खाली रहते हैं, तो माटी के जांच करावे के जरूरत होता है। अब भाई माटी के जांच करावे के भी एक तरीका है ना। जैसे अपने सब है देखो भैया, अगर अपने सबका मान ला शुगर के जाँच करावे के तो डॉक्टर कहा था ना कि खाली पेट जाओ, है ना। तो वैसने माटी के जांच जब अपने सबका परीक्षण करावे करक है तो विशेषज्ञ भैया लोग जौन अपन हैं कृषि के, वो अपने सबसे यही बात कहते हैं कि भाई वह के लिए अपन खेत के सेहत, फसल के पैदावार और सुधार के बदे सबसे महत्वपूर्ण अगर प्रक्रिया है वह है माटी की जांच। और यह के माध्यम से माटी के जौन तत्वमा का समस्या है, पीएच मान में अम्लीयता और क्षारीयता की क्या स्थिति है, और कार्बनिक पदार्थ के सटीक जानकारी अपने सबका यह के माध्यम से मिल सका था। अब जैसे भाई किसान पंच कम लागत में अधिक उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। भाई माटी नीक रहे निश्चित है कि उपज अपन बढ़िया होए। माटी के जांच के बदे अपने खेत से नमूना लेवे के समय कुछ मुख्य बात के ध्यान भी दे बहुत जरूरी है। अब भाई वहमन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौने तरीका से लीन जाए, एक अपने विशेषज्ञ भैया हमेशा बतावत हैं और वही तरीका अपनावे से अपने सबका लाभ मिल सकता है। सबसे प्रमुख बात यही है कि अपने खेत के अलग अलग स्थान से यानी कई जगह से 8 से 10 कोना में से थोड़ी थोड़ी माटी इकट्ठा की जाए। खेत के मेड़, पेड़ के नीचे और खाद के ढेर वाली जगह से अपने सबका नहीं लेखे नमूना। खुरपी या फावड़ा से अंग्रेजी के वी आकार, है ना, अंग्रेजी के वी आकार का 15 से 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा अपने सबका बनावे के चाहिए। फिर गड्ढा के एक तरफ के दीवार से ऊपर से नीचे तक की जो मिट्टी है एक पतली परत छीलकर अलग कर देवे के चाहिए और वहां का एक साफ तसला मां इकट्ठा करे के चाहिए। सभी जगह की इकट्ठा की गई मिट्टी का अच्छी तरह से मिलावे के चाहिए, है ना, आपस में मिले लेक चाहिए। और यह के बाद यह का 4 भाग में बांट लेवे के चाहिए। आमने सामने के जोन 2 भाग है, 4 भाग बांटे हो ना भैया, आमने सामने के जोन 2 भाग है ओका हटाए दो, बाकी बचे 2 भाग का फिर से

0: जाओ और यह प्रक्रिया का तब तक दोहराओ, यानी कि चार भाग में से दो ही लेकर फिर चार भाग में से दो ही लेकर, यानी तब तक दोहराओ जब तक लगभग माटी जौन आप है वो आधा किलो के लगभग ना बचे। माने भाई नमूना के लिए कहो दो चार किलो माटी तो जाए ना, वह के लिए तो एक सैंपल के रूप में थोड़ी माटी जाएगा। तो अपने विशेषज्ञ भैया लोग कहा थे कि लगभग आधा किलो 600 ग्राम माटी होए के चाहिए। तो यह तरीका से अपने सबका लगभग आधा किलो माटी का तैयार करेगा। अब यह का एक साफ पन्नी मा, ये नहीं कि कोनो पन्नी जोन घर में आवत जाता सामान ओहमन धर के भेज, साफ सफेद पन्नी ट्रांसपेरेंट पन्नी में अपने सबका एक रखे है और लैब मा जोन नजदीक मा होए, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र मा चाहे जोन जगह पे आप रहा तो जोन नजदीकी लैब है ओका हुआ भैया दयाओ, ओके एक निश्चित शुल्क राहत है ओका जमा कर दो। और वह पैकेट पे सबसे महत्वपूर्ण बात है आपन नाव, अपने गांव के नाव, पोस्ट पूरा पता और मोबाइल नंबर जरूरी है ना। कहे का भैया कोनो चीज के इतला देख हुए अपने विशेषज्ञ भैया का जांच के बदे या कोनो शक सुबह रह जाए तो वही मोबाइल नंबर पे आपसे पूछ सकते हैं। अब यही के लिए जिला कृषि विभाग कार्यालय या राज्य सरकार के जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है वह मन जांच करावे से अगर हम समझित है अपने सबका एक बढ़िया सलाह मिल सकत है। और यह के लिए कोशिश करो भैया कि जौन तरीका अपने विशेषज्ञ भैया लोग बतावत है वह तरीका से अगर करवो तो निश्चित मान के चलो कि आपका लाभ मिले। अच्छा एक चीज है, लाभ की बात आवत है तो अपने सबका एक काम और करे चाहिए, हमेशा सजगवाही करे चाहिए, सावधान रह चाहिए। भाई अपन खेत खलिहान है वहमन कोने मेर से अपने सबका कौन तरीके के फसल लीन जाए, वह फसल से कितना लाभ होए है, एक फसल लेख है कि बहु फसल लेख है दुई फसल लेख है, एक ही सबके भी जानकारी बहुत जरूरी है। अब ऐसे ने मैं देखो अपने जौन कृषि विज्ञान केंद्र है अपने बगले में मसौधा माँ वह के अध्यक्ष और जौन प्रोफेसर भैया विनायक प्रताप शाही से हम बतवाने हैं कि कैसे अपने सब है आपन बहु फसली खेती करके लाभ लीन जा सकते है। तो भाई उनसे जब बत कही किए ने तो आपो सबके लिए आज पंचायती में लाए ने सुनो और कुछ उमन से भाई गुना जाए पंचो। जैसे अभी आप सुने अपने सबके बीचे माँ डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया हैं, आप अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से। सबसे पहले तो आपके डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है पंचायती माँ। आज के समय में अपने पंचे भाई खेती तो करते हैं लेकिन अगर सह फसली खेती के बात की जाए तो उमन और भी तमाम तरह की चीज आवत है, तो का कुछ कहा चाहिए कि आज के समय में पंचन के लिए का कुछ लाभप्रद है।
1: प्रिय किसान भाइयों, चूंकि आज बात होती है कि अयोध्या जनपद में आप देखते हैं कि हमारा गन्ना का क्षेत्रफल काफी एरिया में लगभग 49-50 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की खेती होती है और गन्ने के साथ सफसली खेती अगर आप करते हैं तो निश्चित में तरह से जो हमारी आय दुगुनी की बात होती है, अब बहुफसली खेती करते हैं तो आपको आय दुगुनी इश्योर हो गए।
0: बिल्कुल,
1: और खास बात है कि गन्ना का अगर हम देखें अभी हम लोगों ने काफी गांव में एक दो चार किसानों के यहाँ बहुफसली खेती करा करके देखा भी गया है कि गन्ना का अगर अक्टूबर में बुआई करते हैं उस समय अक्टूबर में गन्ने के साथ चना होता है, गन्ने के साथ सब्जी मटर होता है, गन्ने के साथ आलू होता है, गन्ने के साथ पीली सरसों जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और जैसे ही अगर गन्ने के साथ आलू लेते हैं या पीली सरसों लेते हैं तो आप शरदकालीन गन्ने की बुआई कर लें और आप मार्च फरवरी लास्ट और मार्च के सेकेंड वीक में आप आलू की खुदाई कर लेते हैं, उसमें किसान भाइयों जो हम जहाँ खरीफ की बात होती है उसी खेत में हम तिल की फसल ले लें तो हमारा जो लागत है वो लागत भी कम हो जाएगी और तिल एक विकल्प के रूप में आ जाएगा कि जैसे ही आलू की खुदाई हो उसमें तिल की बुआई कर दीजिए और 70 से 80 दिन में उसकी तिल की अभी जून के फर्स्ट वीक में उसकी कटाई कर लीजिए तो जो तिल से आमदनी है तो तिल का भी आप किसान भाई देखते हैं कि खरीफ में जब हम तिल लगाते हैं तो एक समस्या आती है कि अगर बारिश हो गई तो हमारा तिल का फसल खराब हो जाता है और गन्ने के साथ जायद में हम तिल की फसल ले लेंगे तो हमारा एक एकड़ में अगर गन्ने के साथ सब फसल ले लेते हैं तो हमारा 2 क्विंटल से 2.5 क्विंटल हमारा तिल का उत्पादन हो जाता है जो बाजार में आप देखेंगे तो 150 से लेकर 200 रुपए किलो तक हमारा तिल की फसल बाजार में मिल जाता है तो ये भी ऑप्शन है। और जो बसंत कालीन गन्ना है इस समय जो आपने बुआई किए हैं जो फरवरी मार्च अप्रैल में आपने किसान भाई तो उसमें जैसे आप देखते हैं कि आजकल मौसम कितना ज्यादा गर्म है हमारा तापक्रम बढ़ रहा है तो उसके गन्ने के साथ खीरा है, गन्ने के साथ टमाटर और गन्ने के साथ मिर्च भी है ये भी फसल और गन्ने के साथ उड़द है और मूंग भी फसल आप लेकर के आप

0: अपने आय को दुगुना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, सह फसली और बह फसली के एक उद्देश्य कि अपने जोन किसान पंच है उनके आर्थिक उन्नति हो, साथ ही साथ भाई जोन फसल कोनो फसल के साथ अपने सबका मिल सकत है और वह मन अपने सबका कुछ आर्थिक रूप से कम लगावे पड़े, साथ ही साथ भाई श्रम भी कम लागे, तो उसे अपने पंच भैया लोगों का लाभ मिल सकता है। का कुछ और सावधानी की आवश्यकता है?
0: देखिए किसान भैया, सावधानी की इस समय गन्ने की फसल है, सब फसली लेंगे तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था पे आप विशेष ध्यान करें, जिससे अगर सिंचाई कमी होगी तो हमारी गन्ने के साथ टिलिंग भी कम होगी और जो हमारी सब फसली खेती है तो उसमें भी हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था को नमी संरक्षण के लिए आप मल्चिंग का भी उसमें प्रयोग हो जाता है, तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम सिंचाई पे व्यवस्था पे, और आजकल भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि खाद एवं उर्वरक का कम से कम प्रयोग किया जाए, और जिसे तो अगर सब फसली लेते हैं तो हमारा खाद एवं उर्वरक का भी बचत हो जाता है और गन्ने के भी साथ साथ हमारी जो लागत है वो भी कमी आ जाती है और हमारा उत्पादन अधिक जो समान उत्पादन है उससे 20-25% तक उत्पादन भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, और अपने सबका देखो उत्पादन के साथ साथ जैसा आप बताइबो क्यों कि अपने भाई श्रम कम लागे, अर्थ कम लागे और साथ ही साथ अपन उत्पादन कुछ बढ़े, सरकार की मंशा है भाई कि किसान के उन्नति करे के, लेकिन वह के लिए स्वयं के विचार स्वयं के व्यवहार में उन्नति करब जरूरी है। तो वह के लिए आप सब विशेषज्ञ भैया हो, अपने भाई पंचन का बतावत रहा तो कुछ और सजगवाही के बारे में कुछ बतावा चाहो तो आप बता दो।
0: देखिए किसान भाइयों, हमारे देखिए इस समय भारत सरकार ने गाइडलाइन, ये आप देखते हैं कि हमारे पास DAP यूरिया काफी किल्लत हो रही है, उसके साथ साथ अगर किसान भाइयों इस समय ग्रीन मैन्योरिंग हरी खाद के रूप में सने और ढांचा अगर खेत में लगाते हैं तो हमारी जो रासायनिक खाद उर्वरक है उसको 20-25% तक आप कम कर सकते हैं। जो एक समस्या आती है तो उसकी समस्या को स्वयं निदान कर, और इस समय ढैचा की फसल, ढैचा हरी खाद के लिए बुआई कर दे, जैसे ही हमारे 40 से 45 दिन की फसल हो जाए तो उसमें हल्की पानी दे करके और आप उसमें पलटाई कर दे, जिससे हमारा 20-25% उर्वरक की तो बचत होती है, जो धान की रोपाई करेंगे उसमें खर पतवार की जो समस्या आती है वो भी हमारा कम होता है।
1: बिल्कुल, अब देखो एक पंथ दुई काज जाता है तरह से, और हम समझी थे अपने पंचन के जौन सजगवाही के बात कहें तो आप बताइबो क्यों, अगर अपने पंचे समय से, तरीका से, तकनीक से और आप सबके अनुभव से अगर करी है तो निश्चित है ओके लाभ मिले, लेकिन लाभ के लिए थोड़ा सा ध्यान देवे के पड़े, का कुछ और इनके सबका ध्यान देवे के जरूरत है?
0: देखिए किसान भाइयों, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भी गर्मी वाली फसल है, जो चाहे वो सब्जियों की है, चाहे आम की बागवानी है, चाहे गन्ना की फसल है, सिंचाई का प्रबंधन आप अवश्य करें, और जहाँ पे तक हो सकता है कि अच्छी उत्पादन लेने के लिए जिसे आच्छादन बोलते हैं मल्चिंग का भी प्रयोग आप करके उच्च गुणवत्ता युक्त आप सब्जी भी बाजार में ले जा सकते हैं। और कहीं कहीं समस्या आती है कि जहाँ तापक्रम बढ़ता है तो उसमें फूल और फलन की भी समस्या आती है, तो उसको आप अगर सिंचाई करेंगे तो आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा।
1: बिल्कुल, देखो गर्मी के बात आप बार बार कहो है, एक बात हम भी पंचन के तरफ से पूछा छेवे, गर्मी के समय में अपने सबका अपने खेत खलिहान में और आपन यह तरीका में जोन भाई कृषि कीन जाते, का कुछ सजगवाही की जरूरत है?
0: देखिए इस समय तापक्रम अधिक है, इस समय आप मिट्टी की गहरी जुताई कर दे, अगर किसी का खेत खाली है जुताई कर दे उसको 6-7-8 दिन, तो हमारे जो कीट एवं बीमारियां जो होती हैं तो वो अगर गर्मी के फसल में गहरी जुताई कर देंगे तो हमारा कीट और बीमारियां मर जाती हैं। और साथ साथ अभी हमने बताया कि आप हरी खाद का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि जो समस्याएं हैं तो आप हरी खाद लगाएंगे तो आपको खुद दिखाई देगा कि हमारा चाहे वो सब्जी की फसल हो, चाहे वो आपके धान की रोपाई करना है, किसी भी फसल को, और दलहनी फसलों का खेत में फसल चक्र अपनाएं, और दलहनी फसलों का जैसे उड़द है, मूंग है, इसकी भी आप बुआई करके इसकी फली तोड़ करके, या लोबिया है सब्जी के रूप में लेते हैं तो इसकी भी बुआई करके आप उस खेत में तोड़ाई करने के बाद उसमें हरी खाद की पलटाई करते हैं।
1: बिल्कुल, अच्छा देखें जब मैंने कुछ कार्य करत है तो मन कहूं ना कहूं समस्या आवत है, का कुछ आपके कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से अपने पंचे जाए के आप सबसे कुछ सलाह मशवरा या फोन के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं?
0: हाँ किसान भाइयों, आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, जो कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा डाबा सेमर में है, आप आकर के 10 से 5 तक, और उसमें जो हमारा मोबाइल नंबर है, अगर आप इसको तकनीकी अगर जानकारी लेना अगर नहीं आ सकते हैं तो मेरा नंबर आप नोट कर लिए, 8755011086 87550 110 86।
1: देखा कितना बढ़िया तरीके से अपने सबके बीच में डॉक्टर विनायक प्रताप शाही भैया आप आए के

0: आज के समय में सहफसली बहुफसली के जो प्रचलन है ओके बारे में कैसे कैसे अपने सब है कीन जा सकते काम कुछ अपन भाई उत्पादन का बढ़ावा जा सकते है, साथ ही साथ अपने कार्य का भी बढ़ावा जा सकते है। एक के बारे में इतना बढ़िया विचार अपन साझा कियो अपने पंचन से और हम समझते पंचे सुनिन है गुनी है अमल में लही है निश्चित है लाभ हो। लेकिन आपका यह बतकही के लिए आकाशवाणी के बारी से हम दे थे बहुत बहुत धन्यवाद। देखा भैया कितना बढ़िया जानकारी अपने जौन विनायक प्रताप शाही भैया रहे। हम समझते हैं कि अपने सबके जौन विशेषज्ञ हैं अपने सबका कुछ जानकारी दे के अपने ज्ञान में इजाफा तो करबे करते हैं, साथ ही साथ अपन खेती का भी चमकावे में बहुत बड़ी भूमिका का निभावत है। कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ आगे है लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
0: ये तो रहा भैया एक जरूरी संदेश, लेकिन एक चीज है कि अपने कार्यक्रम में जौन संदेश अपने सभी आप सबका देवा चाहिए कि अगर अपने खेती का हमेशा चमकाए के चला जाए, हमेशा उसका बढ़ावे की कोशिश की जाए, तो निश्चित मान के चलो कि एक नौकरी में जितना अपने सभी कमावे के सोचित है, अपने घर में रह के अपने गाँव में रह के अपने खेत के सेवा करके ये मान के चलो कि वह से ज्यादा कमावा जा सकता है। साथ ही साथ अपने मातृभूमि पर रह कर जौन आपका संतोष मिले वो एक अलग रहे। तो भाई यह बात का तो हम कही थे, लेकिन यह मन थोड़ा सा कुछ विचार जो उन्हें छबिलाल पाल और उनके साथी भैया गौने के माध्यम से जोड़ा चाहते हैं, चलो सुना जाए जरा।

करवे ना नौकरी हम बनवे किसनवा, बिल्कुल सही है, हम समझते हैं। अगर अपने सभे ये विचार का अपने सभे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि अगर नौकरी के माफिक अपने सबका सब कुछ अपने घर परिवार अपने गांव समाज में रह के मिल सकत है तो वह का हम समझते ज़्यादा बढ़िया है। और लेकिन उसके लिए अपने सबका थोड़ा सा जानकारी हो जरूरी है, भाई खेत खलिहान में जौन अनाज है सब्जी है कोने भाव ताव में मंडी में बिकत बाटे, कोने तरह से अपने सभे का खरीदा जा सकते है, कोने माध्यम से बेचा जा सकते है। तो यह सब के लिए देखो नवीन गल्ला मंडी जनपद अयोध्या से बाजार भाव अपने सभे भाई रोज कार्यक्रम में आप सबके बदे लावा जात है। आज की जो स्थिति रही उसका जान लो आप कि चावल कामन 3070 रुपया प्रति क्विंटल के पाछे रहा, गेहूं दड़ा

2585 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2400 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द दाल काली 9200 रुपए प्रति क्विंटल, चना देसी 6400 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर रही 7150 रुपए प्रति क्विंटल और अरहरी के दाल रही 10950 रुपए प्रति क्विंटल। ये तो रहा गल्ले मंडी के भाव, लेकिन सब्जी के भाव कुछ यह मेर से रहा। आलू सफेद 900 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज ललकई वाली 1300 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1600

0: 300 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1685 रुपये प्रति क्विंटल, लहसुन 7090 रुपये प्रति क्विंटल, तरोई रही 1150 रुपये प्रति क्विंटल, खीरा 2000 रुपये प्रति क्विंटल, बैंगन भी 2000 रुपये प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3250 रुपये प्रति क्विंटल, अदरक रही 8200 रुपये प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2695 रुपये प्रति क्विंटल, कद्दू 1100 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 1450 रुपये प्रति क्विंटल, लौकी 1560 रुपये प्रति क्विंटल, करेला 1260 रुपये प्रति क्विंटल, केला पका रहा 2790 रुपये प्रति क्विंटल, नींबू 6900 रुपये प्रति क्विंटल, पपीता 2790 रुपये प्रति क्विंटल, सेब 11900 रुपये प्रति क्विंटल, अनार 7600 रुपये प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 5130 रुपये प्रति क्विंटल और चीनी रही 4130 रुपये प्रति क्विंटल। यही के साथ ही साथ जो मौसम के हाल अपने सबका भाई मिला बाटे मौसम विज्ञान विभाग आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज जनपद अयोध्या से अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो सामान्य से 1.5 कम रहा, न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा जो सामान्य से 1 ज्यादा रहा, अधिकतम आर्द्रता 88% तक रही न्यूनतम 54% तक, हवा की गति 4.7 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चली है, एक दिशा रही उत्तरी पश्चिमी, वर्षा की स्थिति जो पता चला है वो शून्य है लेकिन आगामी 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है, हवा सामान्य गति से पूर्वी पश्चिमी चले के और औसत तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जैसे भाई अभी जो उन गर्मी है लू है इसे राहत मिले के संभावना थोड़ी सी कम है लेकिन ठीक है अपने सब अपने भाई जो उन कार्य है उसका समय से की जाए, साथ ही साथ ही कोशिश की जाए कि हर कार्य का समय पे जब करबो तो कोनो नुकसान ना हो। अब जैसे कि कल के कार्यक्रम की जानकारी भी आप सबसे साझा के लिए, कल भाई देखो मंगलवार है कृषक महिला कार्यक्रम हुए, एमन मोटे अनाजों की खेती पर चर्चा हुई, साथ ही साथ धान के उन्नत जौन प्रजाति है और नर्सी डाले के वैज्ञानिक विधि है उसके बारे में डॉक्टर श्याम वीर सिंह से बातचीत हुई। तो यह कार्यक्रम का तो कल सुना जाए लेकिन आज के कार्यक्रम में हम समझे थे आप सब जौन कुछ सुने हो है उसका गुने की कोशिश करो, तमाम यह तरह की जानकारी आप सब तक पहुँचावा जाते ही हमारे कि आप सब वह जानकारी से अपने खेती अपने खलिहान का और हरा भरा कर सको और कोशिश करो कि हमेशा यह मौसम में थोड़ा सा मौसम गर्म है यह मौसम में कोशिश यह बात के भी करो कि भैया समय पे अपन पानी पियो, अपने सर पे गमछा जरूर रखो और कोशिश करो कि भाई कोनो यह तरह की स्थिति ना बने जिससे कोनो नुकसान होए, है ना। और नुकसान तब भी होते जब आदमी समय से कोनो काम नहीं करते, अपने भी कार्यक्रम के समय होत बाटे कि फिर बात बत कही हुई तब कुछ नई बात हुई लेकिन अब भाई कार्यक्रम से अनुमति चाहिए थे तो यही साथ प्रकाश कर दे अनुमति। जय हिंद।
1: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
2: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनत है, अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
1: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
2: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
3: लोक सुरमाला आपकी पसंद।

10:30 से ढलती जाए रात प्रोग्राम में पुराने गाने हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती मुंबई से राष्ट्रीय सेवा में। और अब कल के कार्यक्रम प्रातः 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा में दिन भर प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कीजिएगा। 7:30 से अमृत कलश कार्यक्रम होगा। 8:15 से सुर संगम कार्यक्रम सुनिएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम। आज की बात का टॉपिक तेज धूप में बाहर जाने से बचें। इसके बाद योग भगाएं रोग और पर्यावरण को सहजती हुई कुछ काव्य रचनाएं प्रस्तुत करेंगे आनंद शक्ति पाठक। समाचार पत्रों से सेगमेंट में अयोध्या मंडल की लोकल खबरें दी जाएंगी और फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। आपके संदेश आपके गीत प्रोग्राम सुबह 9:00 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा और सुबह 10:00 विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले होंगे। कल दिन में 11:55 से विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल इसका 8वां एपिसोड आपको सुनवाया जाएगा। आकाशवाणी अयोध्या FM से दिन में 12:30 से लोकगीतों का लोक रंग कार्यक्रम होगा। दिन 1:00 से कुछ तुमने कहा प्रोग्राम फेसबुक श्रोताओं के कमेंट्स पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत प्रोग्राम होगा। कल दिन में 2:00 गैर फिल्मी गीत और गजलों का गीतांजलि प्रोग्राम सुनिएगा। 2:15 से दोपहर समाचार दिल्ली से होंगे। 2:30 से नारी जगत कार्यक्रम में चर्चा का टॉपिक थपकी के साथ थप्पड़ भी जरूरी। दूसरा टॉपिक अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। इसके बाद आशीष श्रीवास्तव बताएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स के प्रयोग में ध्यान देने योग्य बातें और साथ ही साथ सौंदर्य टिप्स में एंटी एजिंग के लिए घरेलू उपाय बताए जाएंगे। दोपहर बाद 3:00 से लेकर 5:00 तक केंद्रीकृत विविध भारती के प्रोग्राम मुंबई से होंगे। युवावाणी में कल शाम 5:00 चर्चा का टॉपिक समुचित नींद में सहायक योग। इसके बाद भारतीय इतिहास से सेगमेंट में बिरसा मुंडा का आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। चक्रव्यूह के 7 सवाल भी होंगे और हीट वेव से कैसे बचें और फिल्मी सॉन्ग भी सुनवाया जाएगा। लोक संगीत कार्यक्रम 5:30 से शाम सुहानी 6:10 से गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम 6:30 से किसानवाणी कार्यक्रम में कल महिला कृषकों के लिए प्रसारित किया जाएगा। इसमें चर्चा का टॉपिक रहेगा गृह वाटिका लगाएं हरियाली बढ़ाएं। इसके बाद डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव से मंजू मौर्य की बातचीत सुनवाई जाएगी गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा हो। अलावा इसके बाजार भाव मौसम की जानकारी और लोकगीत सुनवाया जाएगा। आकाशवाणी FM स्टूडियो से 8:15 से कल गीत गुंजन प्रोग्राम 9:15 से महफिल गजल 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम कल हेलो अयोध्या पेश किया जाएगा 30 के लिए और रात 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हम आपको सुनवाएंगे और 10:30 से मुंबई से आपको ढलती जाए रात प्रोग्राम सुनवाया जाएगा। कार्यक्रम रूपरेखा समाप्त हुई। हम आकाशवाणी अयोध्या FM से बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ठीक 7:20 पर आपको आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनवाए जाएंगे।

सभी किसान भाई बहन सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम। आप है आकाशवाणी अयोध्या के साथ 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर इंटरनेट के जरिए। कार्यक्रम रूपरेखा में पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विगत 31 मई को अयोध्या जिले के मुमताज नगर गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामवासियों से की गई बातचीत के संपादित अंश आपको हम सुनवाएंगे आज 7:45 से। वाचन स्वर और एडिटिंग अमरजीत सिंह की, प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। गीत गुंजन प्रोग्राम सुनिएगा 8:15 से। 9:15 से महफिल गजल प्रोग्राम और 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र

0: का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
3: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
4: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे

0: प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था, आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
2: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
4: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
6: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
7: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
4: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
1: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में

0: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केन्द्र का किया शुभारम्भ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केन्द्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
2: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: यह है आकाशवाणी का अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। समय मिलाइए, शाम के ठीक 7:32 हुए हैं और अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम 7:45 तक।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल सुरों में आकाशदीप फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी, चित्रगुप्त का संगीत था। आप सुन रहे हैं जयमाला।

शिवन जुजवी के बोलते ओपी नैयर का संगीत था, आशा भोसले का गाया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म हमसाया से। जयमाला कार्यक्रम का सफर श्रोताओं आज बस यहीं तक।

ये है हम सब का हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर। आज की ये सांध्यकालीन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने रेडियो मित्र AJ अमरजीत सिंह के साथ। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: आकाशवाणी अयोध्या स्टूडियो वॉच में शाम के 7:45 होने जा रहे हैं। लीजिए सुनिए, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विगत 31 मई को अयोध्या जिले के मुमताज नगर गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामवासियों से की गई बातचीत के संपादित अंश, वाचन स्वर और एडिटिंग अमरजीत सिंह की और प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक।
1: नब्बे साल का आकाशवाणी हो रहा 8 जून को, तो उस उपलक्ष्य में हम लोग लोगों से मिल रहे हैं और आकाशवाणी के इस 90 वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का ये जो कार्यक्रम है, इसकी क्या रूपरेखा और क्यों हम इकट्ठा हुए हैं, क्यों आपको आमंत्रित किया गया? आदरणीय प्रधान जी हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, अमरनाथ सर का, जिन्होंने इतने सारे सम्मानित ग्रामवासियों को हम बुलाया, आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे इस गाँव के प्रधान प्रतिनिधि श्री अमरनाथ जी का स्वागत आदरणीय द्विवेदी सर के द्वारा।

0: अनिल सर के द्वारा तालियां बजे आप सबकी। सर का बहुत अच्छा सहयोग आज के इस कार्यक्रम को जाने और समझें। आज के इस कार्यक्रम की संयोजिका से श्रीमती सरस्वती पाठक मैम को मैं आमंत्रित करता हूं।
1: सबसे पहले मुमताज नगर के जितने भी ग्रामवासी हैं, हमारे भाई बंधु, हमारी बहनें, बच्चे जो भी यहां पर आए हुए हैं, आप सभी लोगों का आकाशवाणी अयोध्या की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए। हमारा जो उद्देश्य है यहाँ आने का, हमारे सभी अधिकारियों का और हमारा, कि आप लोग आकाशवाणी अयोध्या को ज्यादा से ज्यादा सुने। आकाशवाणी 90 वर्ष पूरा कर चुका है और ऐसे में आकाशवाणी आपको सूचना और शिक्षा और मनोरंजन, यानी कि जितनी भी अच्छी जानकारी है, चाहे वो आपके हित की है, सरकार की योजनाएं हैं, आपके घर गृहस्थी से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, आपके अधिकार से संबंधित है या आपके कर्तव्य से संबंधित है, ये सारी जानकारी आपके घर में उपलब्ध है आपके रेडियो के माध्यम से। आप काम करते वक्त भी रेडियो सुन सकते हैं, किसी डॉक्टर के पास आप जाकर के सलाह लेते हैं, अपने स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित सलाह लेते हैं, लेकिन जब आप आकाशवाणी सुनते हैं तो आपको कैसे रहना है, गर्मी अधिक पड़ रही है, आपको लू से कैसे बचना है, गर्मी से कैसे बचना है, ये सारी जानकारी आपको आकाशवाणी पर उपलब्ध कराई जाती है, ताकि आप एक स्वस्थ जीवन जिए और अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को अच्छे से पाले पोसें। बच्चे हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम आता है, बच्चे अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करें, कैसे स्कूल में पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें, अपने माता पिता की बात माने, ये सारी जानकारी बच्चों को बच्चों के कार्यक्रम में दी जाती है। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम, उनके स्वास्थ्य के बारे में, जो शायद वो किसी दूर डॉक्टर के पास जाकर के पूछेंगी, कोई किसी वकील से पूछेंगी, या घर गृहस्थी की बात है, किसी से सलाह लेंगी, वो सारी जानकारी रेडियो के माध्यम से आपको आपके घर में बिना कोई कीमत चुकाए मिल जाती है। सरकार आपके लिए इतना सारा पैसा खर्च करती है, अधिकारीगण आपके घर तक चल के आए हैं, आपके गाँव तक चल के आए हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग के पास जानकारी हो, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, और इसके अलावा आप अपना जीवन अच्छे जिए, अपना कुछ ऐसा करें जिससे आप समाज में योगदान दें। आप लोग बस एक काम करिए कि आकाशवाणी को समय निकाल कर सुनिए जरूर। अगर आप सुनेंगे तभी आपको महसूस होगा कि आपने क्या खो दिया था अगर आप आकाशवाणी नहीं सुन रहे थे। जब एक दिन आप सुबह से लेकर के रात तक आकाशवाणी सुनेंगे, तब आपको पता लगेगा कि आपने कितना खजाना पा लिया।

0: सभी अधिकारीगण आपके बीच में आए हुए हैं। आप सहायक निदेशक अभियांत्रिकी हैं श्री अनिल सिंह सर, आप कार्यक्रम प्रमुख हैं आकाशवाणी अयोध्या के श्री संजय धर द्विवेदी सर। आप लोगों के बीच में चलकर सिर्फ इसलिए आए हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसका लाभ मिले और आप लोग आकाशवाणी को अधिक से अधिक सुने। आपका लाभ होगा, आपका फायदा होगा, आप एक अच्छा जीवन जिएंगे, तो यही हम लोगों का लाभ है। बच्चे बैठे हैं मेरे सामने नौनिहाल, ये कल का भविष्य है। ये बच्चे जब अच्छे बनेंगे तो देश का कल भी अच्छा होगा, देश का भविष्य भी अच्छा होगा। तो आप लोग कार्यक्रम को सुनिए और सुन करके अगर कोई बच्चे अच्छे हैं तो वो आ करके बाल जगत कार्यक्रम में बोल भी सकते हैं। इसलिए आप लोग खूब पढ़िए, आगे बढ़िए। मोबाइल पर 101.9 FM आप लोग लगाना जानते हैं ना सब लोग, तो आप लोग जरूर सुनिए। आप लोग अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इसका लाभ बताएं ताकि वो लोग भी सुने। और दिशा दीदी आपकी आपको अभी सारे कार्यक्रमों की डिटेल बताएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इससे पहले मैं निवेदन करूंगी हमारे सहायक निदेशक अभियांत्रिकी श्री अनिल कुमार सिंह सर जी से कि आप कृपया करके आकाशवाणी के बारे में थोड़ा हमारे श्रोतागणों को, भाइयों बहनों को थोड़ा बताएं।
2: अक्सर आप लोग घर पे बैठे आकाशवाणी सुनते हैं, आज आकाशवाणी आपके पास आई है चल के। एक समस्या ये है कि पहले सबके पास रेडियो होते थे, अब रेडियो नहीं है तो सुने तो किसमें सुने, तो आप सबके पास मोबाइल है। मोबाइल के अंदर जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं, एक वेव्स ऐप आया हुआ है, OTT प्लेटफॉर्म है, WAVES प्रसार भारती का है। उसमें आप रेडियो के साथ साथ टीवी के सारे चैनल देख सकते हैं, कहाँ मैच हो रहा है, कहाँ इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, किसान चैनल भी देख सकते हैं, खेतीबाड़ी की जानकारी ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर वेव्स ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर किसी को सहायता चाहिए तो हम यहाँ पर हैं, और उस ऐप से आप सारे लाइव टीवी जितने भी टीवी चैनल्स हैं, आज तक, इंडिया टीवी, दूरदर्शन के जितने भी चैनल्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं रेडियो चैनल को। एक और ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप से आप सारे आकाशवाणी के केंद्र सुन सकते हैं। आप आकाशवाणी अयोध्या डालेंगे, आकाशवाणी अयोध्या तुरंत बजना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास एक विकल्प के तौर पर आप मोबाइल पे सुन सकते हैं। एक बात और बताएं, सारी दुनिया आज रील की दीवानी है, मिलता कुछ नहीं है उससे आपको, टाइम व्यर्थ होता है, समय की व्यर्थता से अच्छा है आप अपना समय उपयोग में लगाएं, अपना काम करते रहें। जो भी काम है आपका, घरेलू काम है, व्यापार का काम है, अपना काम करते रहें, साथ ही साथ रेडियो सुनते रहें। पहले भी ऐसे ही होता था, रेडियो बजता रहता था, आदमी काम करता रहता था, अब आप रील में जुट गए, आपका कीमती समय कितना खराब हो जा रहा है, उसके साथ साथ उसके स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, आपकी आंखें खराब हो रही है, मस्तिष्क में सुन्नपन आ रहा है, मानसिक रोग हो रहा है लोगों को, बड़ी बुरी स्थिति है। आप स्क्रीन टाइम को जितना कम हो सके कम करें, उसका सबसे अच्छा साधन है आप रेडियो से जुड़ें। और जैसा मैम ने बताया, आपको लगेगा कि आप क्या छोड़ रहे थे और कितना आपको नुकसान हुआ और कितना आपको आपसे प्राप्त हो रहा है। आपका काम भी चलता रहेगा, साथ में मनोरंजन और शिक्षा भी चलती रहेगी, सूचनाएं भी चलती रहेंगी। और एक बात और बता दें, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका रेडियो है। जितनी शिक्षा सूचना हम देते हैं उतना कोई नहीं देता है, सच देते हैं, झूठ हम बिल्कुल नहीं देते हैं। हमारा समाचार सबसे अच्छा समाचार सेवा है जो बिल्कुल सत्य दिखाता है, आलतू फालतू चीज बिल्कुल नहीं।

0: करता है, चाहे दूरदर्शन का समाचार हो चाहे आकाशवाणी का समाचार हो, वो एकदम सत्य सूचनाओं पर आधारित है, उसमें अंदर कोई ऐसा टाइम पास नहीं रहता है। तो आप आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़े और ये जो बच्चों को ज्यादा से ज्यादा जोड़े, सारी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। बच्चे स्क्रीन टाइम आजकल डिजिटल उपवास लोग करने लगे हैं, क्योंकि उनको स्क्रीन टाइम डॉक्टर ने बताया है कि अब इसको स्क्रीन से दूर रखिए, बच्चों का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है और साथ ही साथ उनमें हिंसा की प्रवृत्ति आ रही है। आप इस चीज से बचें, आकाशवाणी से जुड़े, बच्चों को भी स्वस्थ रखें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें और साथ ही साथ अपने काम को रोके ना, काम भी चलता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को। हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री संजय धर द्विवेदी सर से निवेदन है कि आप कृपया करके प्रधान जी को गमछा उड़ाकर सम्मानित करिए। हमारे कार्यक्रम अधिशासी और हमारे सीनियर अनाउंसर सभी ऑडियंस को यहाँ पर गमछा उड़ाकर उन्हें पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं अपने युवा श्रोताओं के पास, तो सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या है?
2: मैं, मेरा नाम संजय यादव है।
1: संजय यादव जी, आप आकाशवाणी सुनते हैं?
2: जी मैम, मैं लगभग दिन में 3-4 घंटे जरूर सुन लेता हूँ।
1: कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं आप?
2: 7:20 से लेकर शाम को और सर लास्ट तक सुनते हैं। सब्जियों के बारे में और फलों के बारे में, जानवरों के बारे में और सर डॉक्टरों को बुला के सर आप लोग बहुत अच्छे से एकदम बारीकी से, मतलब सर जहाँ से सोचा ना सके वहाँ से सर आप लोग एकदम खोद के पूछ लेते हैं। सुबह का जो प्रणाम अयोध्या है ये भी सर अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे आसपास की जानकारी इसमें दी जाती है। और सर उसके बाद तो सबसे अच्छा तो सर वो लगता है हेलो अयोध्या।
1: कितने सालों से आप सुनते आ रहे हैं?
2: मैम हम लोग तो मान लीजिए 2015-16 से लगभग सुन रहे हैं।
1: आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूरा कर रहा है, तो इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
2: मैम हम तो श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि वो फालतू में अपना समय ये इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसे जैसे सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि अगर हमको 1 घंटे मिलता है तो कोई आकाशवाणी का एक प्रोग्राम सुन ले, तो वो हमारे लिए मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा।

0: धर्मचंद यादव मुमताज नगर, तो हम लोग उसको जागते थे क्योंकि वही एक सहारा था। पहले तो ना टीवी थी ना ये सब, न्यूज तो जैसे उस समय न्यूज कोई मतलब नहीं था क्योंकि उतनी उम्र नहीं थी कि न्यूज सुने। और
1: कोई दिलचस्प किस्सा आपके जीवन का, आप इतने सालों से आकाशवाणी सुनते आ रहे हैं?
0: दिलचस्प किस्सा क्या, जैसे जब हमारी शादी हुई 2003 में, हमारी पत्नी जिनसे मुझसे कहा कि हमारे लिए रेडियो ले आइए, तो हम उनके लिए रेडियो लाए थे, फिर वो बिगड़ गया, फिर दूसरा भी लाए थे।
1: खरीदे
0: थे 450-450 रुपए खरीदे, नहीं गांव में हमारी एक दुकान थी बंद हो गई, वही खरीदे थे।
1: अभी भी आप सुनते हैं?
0: नहीं अब इस समय नहीं सुनते, अब तो मोबाइल का जमाना, लेकिन अब सुने
1: तो मोबाइल में। आप फिर आप प्रसार भारती का न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप आकाशवाणी अयोध्या सर्च करके आप सुन सकते हैं।
0: सुनेंगे आप।
2: आशिक यादव।
1: आशिक यादव जी, आप रेडियो सुनते हैं?
2: जी।
1: कितने सालों से सुनते आ रहे हैं?
2: लगभग हम लोग तो बचपन से ही सुनते आए हैं क्योंकि नाना जी रेडियो लगातार सुना करते थे। अब तो आपका कार्यक्रम लगभग सुबह 6 बजे से चल जाता है, लेकिन उस समय पे लगभग आपका कार्यक्रम दोपहर के बाद से लगभग चालू होता था, दोपहर के आसपास आकाशवाणी फैजाबाद जो चलती थी 101.9 MHz जब चलता था, तो वो दोपहर के बाद हमें लगता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि हमारी उम्र बहुत कम थी उस समय, हम लोग सिर्फ सुना करते थे साथ में। तो समय तमाम प्रकार के कार्यक्रम आते थे, हेलो फैजाबाद और जो है हेलो फरमाइश करके।
1: सबसे ज्यादा आप क्या सुनते थे
2: उसमें? जब हेलो फरमाइश की
1: सुनने के, जैसे आपको बेसब्री रहती हो कि अभी ये टाइम होने वाला है, अब ये रेडियो ऑन कर ले जल्दी से।
2: जी हाँ, जब फरमाइशी गीत आते थे हेलो फैजाबाद, फोन लगाने की बड़ी उत्सुकता रहती थी उस समय की।
1: फोन लगता था आपको कि नहीं लगा?
2: अभी आज तक फोन नहीं लग पाया।
1: कितनी बार आप ट्राई करते थे फिर?
2: अरे लगभग जब तक कार्यक्रम लगभग 1 घंटे या 1.25 घंटे का कार्यक्रम रहता था, जितनी देर वो चलता था उतनी देर लगभग लगातार मिलाया जाता था, लेकिन कभी फोन नहीं लगा। लगता था कि ISD STD काल किसी तरीके लग जाए, लेकिन कभी लगा नहीं। हाँ, जब कोई चिट्ठी पत्री पढ़ के कार्यक्रम आता था उस फरमाइशी गीत, तो वो भी आते थे तमाम लेटर, तो हम लोग उसका सोचते थे कि यार ये तो वहाँ से बंगलोर से भेज दिया, ये वहाँ से भेज दिया, ये वहाँ से भेज दिया। जैसे यहाँ के जो लोग कमा खा रहे हैं बाहर जा करके, जो कमेरा समाज है, तो वो लोग भी अपनी फरमाइश वहाँ से करते थे कि उनके घर परिवार वाले, उनकी फरमाइशी चिट्ठी पहुँच जाएगी तो उनके घर परिवार वाले कहेंगे कि हमारे भैया जो है ये गाना सुनना चाह रहे थे और इसको सुने, क्योंकि अच्छा खासा परिचय दिया जाता था।
1: रेडियो से रिलेटेड कोई आपके लाइफ की अभी तक की स्टोरी है जिसको सुनकर इमोशनल हो जाते हो या फिर बहुत मजा आ जाता हो आपको, आप हंस उठते हो?
2: नहीं, गाने जैसे खिस्सा कहानियां भी आती थी रेडियो में आपके यहाँ उस समय।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अभी भी सुनते हैं?
2: जी हाँ, मैं सुनता भी हूँ। और मैं एक साथ और भी कहना चाहता हूँ कि जो परंपरा चली आ रही, मैं युवाओं को, युवा होने के नाते मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से आकाशवाणी से, कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके अपना लाइफ जो है सुनने की तरफ ले जाइए, देखने की तरफ कम, क्योंकि जो जितना आप स्क्रीनिंग टाइम देंगे उतना आपकी आंखें, सेहत, दिमाग, सारी चीजें आपका डिस्टर्ब रहेंगी।

0: तो जरा।
1: आपका नाम क्या है?
2: गणेश यादव मैम।
1: आप आकाशवाणी सुनते हैं?
2: जी मैम, 5 साल से कंटिन्यू सुनता हूँ।
1: 5 साल से लगातार सुन रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं आप?
2: कार्यक्रम बहुत सुनते हैं, जितना भी कार्यक्रम आता है, सुबह आता है, बढ़िया बढ़िया बातें बताते
1: हैं। आप कितने घंटे सुनते हैं लगभग दिन में रेडियो?
2: हम काम भी करते हैं मैम, सुनते भी हैं।
1: क्या काम करते हैं आप?
2: जी मैं गैस वाला काम करते थे, इस समय अपने घर हमें प्रणाम अयोध्या सुबह अच्छा लगता है। दोपहर में अंगना वंगना कार्यक्रम आता है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताते हैं, वो भी सुनते हैं, गाना भी सुनते हैं, समाचार भी सुन लेते हैं मैम। 90 वर्ष बीत चुका है ये भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम।
1: इसी 8 जून 2026 को
2: अच्छे से बताएं। अमरजीत सिंह क्या नाम है, गणेश सिंह, फोन लगाते हैं मैम, फोन लगता नहीं है लेकिन आवाज सुनते रहते हैं सबके, गाना भी सुनते हैं।
1: चले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जैसे किसी का बर्थडे हो गया, किसी की एनिवर्सरी हो गई, या फिर किसी को अपने दुकान का करवाना है विज्ञापन प्रचार कि आपकी दुकान पे बहुत सारे लोग आए और खरीदारी करें, आपका कुछ भी ऐसा चीज है जिसका विज्ञापन आपको करवाना है एडवर्टाइजमेंट, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 101.9 MHz FM बैंड पर आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र के ऑफिस पर विजिट कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं ayodhyaakashwani@gmail.com पर। तो बताइए अभी तक हमने जितनी बातें बताई किस किस ने ध्यान से सुना, अगर जो सही जवाब देगा तो उसके लिए कुछ प्राइज है हमारे पास, और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, ठीक है, तो वो युवाणी प्रोग्राम सुन सकते हैं, प्रणाम अयोध्या सुन सकते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं जिसमें पढ़ाई के लिए आप सभी को बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है और मिलेगी भी, तो आप सभी सुनिएगा जरूर। अगर आप सभी के पास रेडियो सेट नहीं है तो आप सभी क्या कर सकते हैं? कोई सही जवाब देने वाला है हाथ ऊपर कर दे, क्या कर सकते हैं आप?
3: पहला नंबर, जैसे गूगल हर कोई नहीं चला पाता है, जैसे सब लोग में कोई पढ़ा है कोई अनपढ़ा है, मोबाइल सभी के हाथों में है, लेकिन गूगल क्या है, क्या हमको जानकारी दे सकता है, ये हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों नहीं उठा पाते? अनपढ़ होने के नतीजे से। और रेडियो जो है वो हमको शब्दों में समझाएगा, इसलिए जो है 300-400 का रेडियो हम खरीद सकते हैं, हर घर में होना चाहिए।
1: आपका नाम क्या है?
3: जानकारी चाहिए तो केशवराम प्रजापति।
1: केशवराम प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। सभी के पास रेडियो सेट नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाकर वहां से प्रसार भारती का न्यूज ऑन AIR ऐप वहां से डाउनलोड करके वहां से आकाशवाणी अयोध्या अपना सुन सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है। ग्राम प्रधान मुमताज नगर के अमरनाथ यादव जी, आकाशवाणी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप?

0: रेडियो सुनते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको सबसे अच्छा लगता है?
1: क्योंकि हम लोगों के पास बड़ी व्यस्तता है, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और भी जिम्मेदारी है, लेकिन जब खाली रहते हैं तो सुनते हैं, तो उससे हम लोगों को तरह तरह की जानकारियां मिलती हैं। और आज के समय में जो इस रेडियो के माध्यम से जो भी जानकारियां मिल जाती है, बहुत बड़ी चीजें हैं। और हम लोग प्रयास ही करेंगे तो धीरे धीरे इसकी जितनी भी जानकारियां होंगी लोगों को बताया जाएगा, ग्राम सभा में बताएंगे, क्षेत्र के लोग बताएंगे और हम खुद जानेंगे और इसका प्रचार प्रसार कराएंगे और लोगों को समझाएंगे बताएंगे। और आज हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ बहुत अच्छी चीजें सीखे जो हमको इससे पहले नहीं जानकारियाँ थी, लेकिन कुछ चीजें आपके हमारे जो अधिकारीगण जो भी साथी लोग आए हैं, इसके लिए आप सब पूरी टीम को, आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत

0: हैं। इसके लिए आप सब पूरी टीम को, आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद।
1: अब हम अंत में कार्यक्रम के समापन के लिए आदरणीय हमारे कार्यक्रम प्रमुख श्री संजय दत्त द्विवेदी सर से अनुरोध करेंगे कि इस कार्यक्रम को समेटते हुए इसके समापन की घोषणा करें। सर,
2: आदरणीय अनिल जी, हमारे यादव जी ग्राम प्रधान और हमारे साथी जो सब लोग आए हुए यहाँ, आप सब लोगों ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में जो कार्यक्रम हम लोगों ने आपके साथ इकट्ठा होकर साझा किया, ये जानने का प्रयास किया कि आकाशवाणी से आप लोग कितना जुड़े हुए हैं, और दूसरा प्रयास हमारा ये था कि जो नहीं जुड़े हुए हैं उनको हम आकाशवाणी के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, जिससे हम उनके लिए जो कुछ कार्यक्रम करते हैं उसके बारे में वो जान सकें, समझ सकें। आप सब लोग आकाशवाणी के इस आयोजन में जो हमारे ग्राम प्रधान जी के सहयोग से आयोजित हुई, इसमें इकट्ठा हुए, आए और अपना समय दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आपने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विगत 31 मई को अयोध्या जिले के मुमताज नगर गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामवासियों से की गई बातचीत के संपादित अंश सुने। वाचन, स्वर और एडिटिंग अमरजीत सिंह की, प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। और अब आकाशवाणी अयोध्या FM पेश करने जा रहा है बस थोड़ी देर में फिल्मी गानों का प्रोग्राम गीत गुंजन। जाइएगा नहीं कहीं।

0: सोलन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: क्या हाल चाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, कहाँ हैं आप? आ जाइए अपने अपने रेडियो सेट के पास, अपने अपने मोबाइल के पास। अगर इंटरनेट से सुन रहे हैं रेडियो को, मोबाइल ऐप पर न्यूज ऑन एयर के जरिए सुन रहे हैं, और आज का ये प्रोग्राम आपके रेडियो मीत अमरजीत लेकर हाजिर है। आवाज से आप पहचान जाते हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती अब। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप नाम नहीं बताते हैं, तो जो लोग पहली बार सुन रहे होते हैं तो नाम तो बताना ही पड़ता है है कि नहीं? आप हंसते गाते मुस्कुराते होंगे, सेहतमंद होंगे, दुआओं में जब आपने मुझे याद कर लिया तो मैं पहुंच गया आपके पास। हवाओं की तरंगों पर सवार होकर आकाशवाणी अयोध्या से 101.9 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर प्रोग्राम है जी गीत गुंजन बॉलीवुड फिल्मी गानों का। आज बात कहां से शुरू की जाए? आज बात आकाशवाणी से ही शुरू की जाए, क्योंकि 90 साल आकाशवाणी आज अपने पूरे कर रहा है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जन सेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और रात 12 बजे के बाद 91 ईयर्स का हो जाएगा अपना आकाशवाणी। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में से आकाशवाणी का नाम दे दिया गया। अब तो इसे ऑल इंडिया रेडियो भी नहीं कहा जाता है, अब पूरी तरह से जी हां आकाशवाणी ही बोला जाता है। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जहां से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और जिनसे 23 भाषा

भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण भी हो रहा है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी विदेश सेवा विभाग भारतवासियों के लिए एकजुट करते हुए विश्व को 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। जी हाँ, विदेश सेवा से भी जो है आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। जो इंडियंस बाहर रहते हैं उन तक भी ये प्रोग्राम पहुंच रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। जी हाँ, और आपको भी बता दें कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय यहाँ पे केवल 6 ही आकाशवाणी केंद्र थे। कुल मिला के 9 थे पहले, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में 3 आकाशवाणी केंद्र चले गए और यहाँ रह गए केवल 6। और आज देखिए 591 केंद्र हो गए हैं, जिसमें बहुत से रेनबो, गोल्ड और क्षेत्रीय चैनल भी हैं, FM के भी चैनल हैं, अब तो सामुदायिक रेडियो भी आ चुके हैं। चलिए बातें होती रहेंगी और यहाँ पर एक गाना जो है गाना प्ले कर दिया जाए। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। जी हाँ, मेरी आवाज ही पहचान है, हर आकाशवाणी वाला अपने आप को यही कहता है बस।

जी हाँ, आवाज ही तो पहचान है आकाशवाणी से हर किसी की। और अब तो लोग दिखने भी लगे हैं, क्योंकि एक जमाना था हम लोग घर में रेडियो सुनते थे, तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी बात भी हम लोग कर पाएंगे आरजे से या अनाउंसर से। तो अब तो लोग बात भी करते हैं सीधे और अपना गाना भी सुनते हैं, तो जमाना बहुत बदल चुका है। और आज है विश्व महासागर दिवस, तो इस पे भी कुछ बात हो जाए। महासागर हमारे ग्रह के सबसे बड़े संरक्षक हैं। वे दुनिया की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कंट्रोल करते हैं। जीवन और आजीविका का आधार भी है ये करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयों और आजीविका जैसे मछली पकड़ना और समुद्री व्यापार का मुख्य स्रोत भी है। समुद्रों में हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा और अन्य जहरीले पदार्थ भी जा रहे हैं, जिसे भारतीय भी ऐसा कर रहे हैं। जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र इकोसिस्टम जो है वो खराब हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये दिन लोगों को कचरा कम करने और समुद्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित करता है। इस दिवस की शुरुआत सबसे पहले 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में से आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी थी। और हमने यहाँ पे गाना चला दिया समंदर वाला ही। देखिए, सृष्टि में जितनी भी चीजें बनी है ना, वो ऐसी वैसी नहीं बनी है, बहुत सोच समझ के उस ईश्वर ने बनाई है। और जब उनमें संतुलन बिगड़ता है ना, तो फिर धरती पर रहना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से अभी ग्लोबल वार्मिंग के चलती है, देखिए अब मौसम बराबर एक जैसे रहते ही नहीं है। कभी अचानक बारिश हो जाती है, कभी ओले पड़ने लगते हैं, कभी आंधी आ जाती है, कभी तूफान हो जाता है, कभी भूकंप आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग धरती से छेड़छाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जंगलों को काट काट के कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दे रहे हैं, तो हवा पानी फिर कहाँ बचेगा? सुनिए गाना।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह है अयोध्या 101.9।
3: रग रग में इस तरह तू समाने लगा, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगा।
2: आपकी चॉइस AJ अमरजीत आपके पास।

अक्टूबर से इसी तरह से सुनते रहें 101.9 पर और पूरी दुनिया में मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आकाशवाणी अयोध्या को। तो बस प्रोग्राम का भी मिड हो गया, 8:29 और 40 सेकंड हो रहे हैं। प्रोग्राम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या FM से। अक्सर बढ़ती हुई समझ जिंदगी को मौन की ओर ले जाती है, होता है ना कुछ ऐसा ही। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसकी समझ बढ़ती है तो वो चुप रहने लगता है, पता नहीं क्यों। इसलिए हम अकेले रहकर कभी नहीं थकते। हम थकते हैं तो उन लोगों से, उनके व्यवहार से, इस दुनिया से थकते हैं। बाकी ये अकेलापन तो रोज का है। अब जो जानबूझकर अकेले हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अब तो जानबूझकर अकेले हो जाते हैं, क्या फायदा उस भीड़ में रहने का जहां अपनापन कम और दिखावा ज्यादा हो। तो आजकल तो कुछ ऐसे ही हो रहा है ना। जी हाँ, उन दिनों को याद कीजिए जब एक छत के नीचे भरा पूरा परिवार होता था, 10-12 सदस्य होते थे, सब मिलजुल कर रहा करते थे। अब ऐसे परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं। मनोरंजन के लिए सिर्फ घरों में रेडियो हुआ करता था और फिर उसके बाद टेलीविजन आ गया, 4 टांगों वाला टेलीविजन। अब तो दीवारों में LED लग रही है, उस समय टेलीविजन के भी पैर हुआ करते थे लकड़ी के। लेकिन वर्ष 2000 के बाद इंटरनेट के जाल ने हम सबको ऐसे जकड़ लिया, ऐसा जकड़ लिया कि पूछिए नहीं।

0: ने अपना मुरीद बना लिया। एक ही घर में हम सब आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं, वो भी कम कर दिया है, क्योंकि हर एक कोने में कोई ना कोई मोबाइल लेकर बैठा रहता है, देखा रहता है क्योंकि मोबाइल ने करीब नहीं बल्कि दूर कर दिया है। याद कीजिए जब सब एक साथ बैठ के खाना खाते थे, बातचीत करते थे, हंसते गाते और मुस्कुराते थे कुछ इस तरह से।
1: ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, हो ठंडे ठंडे पानी से

तो भाई इस गाने ने पुराने दिनों की भी यादें ताजा कर दी और ये चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है ना उसमें थोड़ी ठंडक पहुंचा दी। पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? तो अब क्या बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात कर ली जाए, खेलों की बात कर ली जाए, क्योंकि जिस तरह से योगा करना जरूरी है ना वैसे खेलना भी जरूरी है। और जब हम स्पोर्ट्स में रहते हैं तो आधी टेंशन हम लोगों की दूर हो जाती है। न्यू चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला गया। इस मुकाबले को भारतीय टीम ने एक पारी और 300 रनों से जीत लिया। आज मुकाबला तीसरे दिन यानी आज 8 जून के तीसरे सत्र में ही समाप्त हो गया। भारतीय टीम की इनिंग्स के हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में यह

सबसे बड़ी जीत रही है। इसके पहले भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अक्टूबर 2018 में राजकोट के मैदान पर एक पारी और 272 रनों से जीत दर्ज की थी। इस इकलौते टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की थी। इसके बाद अफगानी टीम अपनी पहली पारी में 152 रनों पर ही ढेर हो गई और उसे फॉलो ऑन खेलना पड़ गया। केएल राहुल और शुभमन गिल ने शतक बनाए। साई सुदर्शन और ऋषभ पंत ने 81-81 रनों की शानदार पारियां खेली और वाशिंगटन सुंदर ने भी शानदार 52 रन बनाए। लेकिन आपके रेडियो मीट अमरजीत ने क्या किया, उसने लगाया ये गाना एक और जबरदस्त आप सबके पास, उड़ते बादल से पूछो। पूरा गाना सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या गाना है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: तो बस जाने का टाइम आ गया गीत गुंजन प्रोग्राम से, लेकिन एक गाना तो भी सुनवाना है ना, इतना टाइम तो है ही है मेरे पास। लेकिन जाने से पहले कहें क्या आपसे चलिए कुछ तो कहना ही है, तो बस यही कह के जा रहे हैं इस प्रोग्राम से। कितना भी ऊंचे आसमान पर उड़ो, कितना भी ऊंचे आसमान पर उड़ो।

लेकिन धरती से जुड़े रहो, है ना बढ़िया बात। जमीन आप पे पैर होने चाहिए आपके। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कामयाबी छोटी सी मिली तो आसमान पर उड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है कि उससे पहले कभी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं हो किसी ने। तो इसलिए जितना भी आप ऊंचे उड़े लेकिन धरती पर आपका पैर जुड़ा रहे। और मुझे आवाज आ रही है कि फिर से एक बार ये बोल दीजिए, चलिए बोल देते हैं। कितना भी ऊंचे आसमान पर उड़ो लेकिन धरती से जुड़े रहो। और दूसरी एक बात, रोवो ना रुलावो किसी को, रोवो ना रुलावो किसी को, हंसो और हंसाओ सभी को। और आइए प्रोग्राम के आखिर में सुने ये गाना।

मेरे प्यारे सुनने वालों, गीत गुंजन प्रोग्राम खत्म करने की अब इजाजत दीजिए। आपका रेडियो मीत अमरजीत बस यही कहता है, आप हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे बस याद रखिएगा। और इसी तरह से हम आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए, गीत गुंजन प्रोग्राम में बातें करने के लिए और बढ़िया बढ़िया गाने सुनवाने के लिए। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

0: बॉलीवुड फिल्मी गानों का यह था प्रोग्राम गीत गुंजन आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से। थोड़ी देर में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे।
1: वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। यह योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परम्पराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की

0: घोषणा की है।
1: ये संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुँच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
2: R&D and innovation oriented businesses.
1: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
6: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और
0: इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
5: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में

0: भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रोग्राम की आखिरी गजल इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
0: और अब लीजिए सुनिए मिताली सिंह की आवाज में इस गजल को।

0: इस गजल के साथ ही आज का महफिल गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए शुरू करते हैं हेलो अयोध्या प्रोग्राम।
1: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपके अपने एफएम 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर।
1: तो आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते और सेहतमंद हैं, दुआओं में आपने मुझे याद किया और ये प्रोग्राम भी यहाँ से शुरू हो गया हेलो अयोध्या, जिसमें आप सीधे कॉल लगाते हैं 7376804090 नंबर मिलाकर 7376804090 और हम तक पहुंच जाते हैं अपने पसंद के गानों के लेकर। और देखें मेरे पास पहुंच कौन गया जी, बताइए अपना नाम कहां से।
2: धर्मेंद्र
1: जी, क्या खाना नहीं खाया, आप इतना सुस्त क्यों बोल रहे हैं?
2: आवाज नहीं जा रही क्या?
1: आवाज जा रही, लेकिन आप लग रहा बड़ा लेजी है, आराम फरमा रहे हैं। मेरी आवाज में इतना जोश है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे वहां से। हाँ थोड़ा आलस छोड़िए, आलस से जिंदगी नहीं कटती है।

0: चेतनता लाई अपने अंदर। तो धर्मेंद्र करते क्या वहां पर मया बाजार में?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा, तो चलिए देशभक्ति गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया। जब इस प्रोग्राम में आया कीजिए ना, दिल खोल के और मस्त होके बातें किया कीजिए। डरने की कोई बात नहीं इस प्रोग्राम में, है ना?
1: गाना सुना दीजिए।
0: चलिए हम गाना आपको सुनवा रहे हैं। कॉल के लिए शुक्रिया आपका।

0: और अब कौन आ गया 7376 80 40 90 नंबर को मिलाकर आकाशवाणी अयोध्या में। जी आप भी आइए, आपका भी स्वागत करते हैं, नाम बताइए।
1: हेलो सर, नमस्ते, गुड इवनिंग।
0: नमस्ते जी, गुड इवनिंग, नमस्ते, एक ही चीज करिए, हम लोग समझ जाएंगे। है ना
1: जी सर, मैं आकाशवाणी अयोध्या की वही जानी पहचानी श्रोता पिंकी रिंग की बात कर रही हूँ, जगदीशपुर शुगर दीवानों के शहर जिला रायबरेली।
0: जगदीशपुर से रिंकी पिंकी पहुंच गई है जी, और आकाशवाणी अयोध्या को आप दिलो जहाँ से चाह रही हैं, और अभी कुछ महीनों से ही आप यहाँ के प्रोग्राम से सुन रही हैं।
1: जी बिल्कुल सर, मैं आपके चैनल की नई श्रोता हूँ, लेकिन अच्छा सुनती रहती हूँ, मुझे आपके यहाँ के कुछ कार्यक्रम जो बहुत अच्छे लगते हैं।
0: आज आपकी कॉल मेरे ख्याल से आकाशवाणी लखनऊ में भी लगी थी, मैं सुन रहा था वो प्रोग्राम।
1: जी सर, आप हमें सुन रहे थे और हम आपको सुन रहे थे।
0: बस मैं तो बिल्कुल लास्ट में जाके बात हुई दीप्ति जी से।
1: जी मेरी फेवरेट अनाउंसर है
0: मेरी भी
1: ज्योति मैम, और मुझे आकाशवाणी लखनऊ सुनना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा फेवरेट चैनल है।
0: क्योंकि मैंने आज मन बनाया हुआ था कि आज मैं उनसे बात करूंगा ही करूंगा, और कामयाबी मिल गई वहाँ।
1: सर वैसे सर आपकी भी कॉल लगी थी, मेरी भी कॉल लगी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अनाउंसर उनसे कॉल करते हैं तो और भी अच्छा लगता है।
0: और विजय कुमार पांडे जी की भी बलरामपुर से कॉल लगी थी, उन्होंने भी याद किया था।
1: जी जी सर, मैं सभी श्रोताओं को सुनती
0: देखिए
1: मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: आज
1: आज कार्यक्रम में क्या होता है कि सर उस श्रोता की आवाज और मतलब उनके जो गांव की विशेषताएं होती है वो भी जानने को मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है।
0: तो आज देखिए दिन कितना बढ़िया था, आकाशवाणी के भी 90 साल पूरे हो रहे थे
1: जी,
0: और वहाँ पर कितने साथी एक से बढ़कर एक जुड़ गए और यहाँ भी जुड़ेंगे अभी।
1: जी सर बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत गर्व की बात है सर आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए।
0: बिल्कुल, तो आज गाना रिंकी को कौन सा सुनवाया जाए?
1: जी सर मैं रिंकी ने, मैं पिंकी बात कर रही हूं।
0: हम लोग पहचान ही नहीं पाते, आवाज दोनों की एक जैसी है ना, इसलिए ऐसा दिक्कत होती है।
1: नहीं सर ऐसा नहीं है बिल्कुल, हम दोनों की आवाज सेम ही नहीं है।
0: अच्छा।
1: अलग अलग है, लेकिन कुछ अनाउंसर बोलते हैं कि हम दोनों की आवाजें मिलती हैं।
0: चलो तो फिर पिंकी को कौन सा गाना सुनवाएं?
1: जी सर आज मुझे वो भी मूवी का फेमस वाला गीत सुना दीजिए, क्योंकि आज डिंपल कबाड़िया जी का जन्मदिन है, तो हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन।
0: गाने के बोल बता दीजिए फिर आपका, बॉबी फिल्म से गाना हम निकाल दें।
1: जी सर हम तुम एक कमरे में बंद हैं।
0: अच्छा ये वाला गाना है।

0: चाबी खो जाए।
1: जी सर।
0: चलिए कॉल के लिए शुक्रिया। आपका गाना रायबरेली जगदीशपुर में पहुंच रहा है।
1: जी, और सर मैं डेडिकेट भी करना चाहूँगी।
0: जल्दी से बोलिए नाम सबके।
1: जी सर, आपको और आपकी मतलब पूरी टीम को और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सबको।
0: चलिए शुक्रिया।

0: जी हाँ, आपकी यादों के रंग आकाशवाणी के संग। जहाँ एक तरफ आकाशवाणी आज 90 साल पूरे कर रही है, वहीं रात 12 बजे के बाद ये 91वें वर्ष में पहुंच जाएगी आकाशवाणी। और वहीं अवध की शान, हर मन प्यारा आपका अपना आकाशवाणी, जो कभी फैजाबाद था पहले, तो अब 17 जून 1993 से अपने 33 साल भी जी हाँ पूरे कर रहा है। और एक लंबा सफर हम सब ने मिलकर यहाँ तय किया है। और ये केंद्र आकाशवाणी अयोध्या के नाम से तो बस कुछ ही दिनों से है, लेकिन उसके पहले स्थापना दिवस से ये आकाशवाणी फैजाबाद के ही नाम से जाना जाता था। तो अनेक कार्यक्रमों में परिवर्तन भी हुए हैं तब से लेकर आज तक। 33 वर्षों की ये प्रसारण सभा यात्रा जो है, इसका सारा श्रेय आप सभी को जाता है, आपके जैसे सुधी और गुणी श्रोताओं को जाता है, क्योंकि आप हैं हमारे साथ तो हम हैं आपके साथ। और अब आकाशवाणी अयोध्या की आवाज FM 101.9 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से 60-70 किलोमीटर के दायरे तक सीमित भी नहीं है। अब ये न्यूज ऑन एयर और वेब्स के जरिए जो है पूरी दुनिया में पहुंच रही है। सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म्स भी हैं, इंटरनेट के जरिए देश और दुनिया के हर कोने में ये आवाज पहुंच रही है। तो आज आकाशवाणी के 90 और आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या के 33 वर्ष पूरे होने से पहले आपके दिल में कौन कौन सी यादें हैं, उन्हें मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और देखिए अब मेरे साथ यहाँ टेलीफोन लाइन पर कौन आ गया। जी नाम बताइए अपना, अपना नाम बताइए, आप रेडियो पर आ चुके हैं।
1: अथर्व राय।
0: अथर्व राय कहाँ से कॉल कर रहे बेटा?
1: नंदीग्राम।
0: नंदीग्राम तो बहुत बढ़िया जगह पे रह रहे हैं, मंदिर अंदर बहुत बढ़िया बना हुआ है वहाँ पर, है ना? तो अथर्व क्या करते हो, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो अभी? किस क्लास में?
1: फोर्थ क्लास।
0: अच्छा, फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये बताइए, पढ़ते वक्त आपको अंग्रेजी ज्यादा अच्छी लगती है कि हिंदी अच्छी लगती है?
1: मैथ।
0: अच्छा मैथ। मैथ से तो सब बड़े घबराते हैं, कहते हैं कि मैथ हमको आती नहीं है। तो आपको बढ़िया आती है ना? तो खाना खा लिया कि नहीं अभी अथर्व ने? अथर्व बोल नहीं रहे। अथर्व क्या हुआ? कुछ नहीं। तो गाना आपको सुनवा रहे हैं बच्चों वाला, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं, फोर्थ क्लास में पढ़ रहे हैं। कॉल के लिए आपका शुक्रिया। नंदीग्राम में आपका गाना पहुंच गया।

0: जी हाँ, घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। टाइम जी कभी रुकता नहीं है, और यहाँ पर हमारे कॉलर भी नहीं रुक रहे हैं, वो भी लगातार कॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अब देखिए मेरे साथ आ कौन गया इस प्रोग्राम में, नाम बताइए जी अपना। आपकी आवाज रेडियो पर आ चुकी है, आप बताइए कहाँ से कॉल कर रहे हैं।
1: सर हम बछड़ा सुल्तानपुर से बोल रहे हैं।
0: तो ये तो बछड़ा सुल्तानपुर आप वहाँ पे रहती हैं, आपका नाम क्या है?
1: सर मेरा ज्योति यादव है।
0: अच्छा जी, ज्योति जी करती क्या है आप?
1: सर हम घर पर रहते हैं, अपने दो बच्चों के साथ में रहते हैं, मेरे हस्बैंड गोदरेज अलमारी का काम करते हैं।
0: हाँ, उस साइड अलमारियाँ बनती हैं गुलाबाड़ी के पीछे जो है ना।
1: जी सर जी कुनूर के पीछे जी।
0: तो आपके छत से ही गुलाबाड़ी दिखती होगी पूरी बगीचा
1: जी।
0: तो ये बताइए कि आकाशवाणी को 90 साल आज हो रहे हैं, और आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को भी जो है 17 जून को 33 साल हो जाएंगे, कुछ आपके दिल में बात आ रही है, पुराने दिनों की याद आ रही है कोई आपको?
1: सर हम तो 20 साल से पहले ही सुन रहे थे सर।
0: वेरी गुड। तब फैजाबाद नाम था ना।
1: पहले वो अरे मन भावन आता था और
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: रात के गीत हमारे आता थे।
0: जी जी, बस बस। तो बस देखिए पुराने दिनों की यादें जब आती हैं ना, तो एक से बढ़कर एक प्रोग्राम वहाँ पे थे। जागो जिंदगी प्रोग्राम होता था सवेरे, कृषि चर्चा भी होती थी और स्वास्थ्य चर्चा भी होती थी, है ना?
1: सर मेरी तीसरी बार कॉल लगी है।
0: हाँ।
1: एक सदन सर से और अरे आजी सर से, और ये बस आप ही की आवाज सोच रहे की अमर जी भैया आए तब उन्हीं से बात करेंगे।
0: देखिए जब आप कॉल लगातार लगाती रहेंगी ना, तो सबसे बात हो जाएगी, जितने भी यहाँ बोलने वाले हैं सबसे बात हो जाएगी आपकी। तो आज गाना आपको मुस्कान से आपने बताया, जाने मन चुपके चुपके।
1: जी सर।
0: चलिए कॉल के लिए शुक्रिया आपका ज्योति जी, आपके पास गाना पहुंच रहा है। गुड नाइट हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को रात को 11:10 तक रहना रहता है। बहुत सेंस से बात करनी पड़ती है हम लोग को।

0: तो इस प्रोग्राम में आज के सबसे पहले मेरे पास कॉल लगी थी विश्वजीत की नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से, और उनकी कॉल जैसे मैंने होल्ड की कुछ देर के बाद उनकी कॉल अचानक कट गई और वहाँ पर धर्मेंद्र आ गए थे माया बाजार से। लेकिन अब मेरे साथ जी हाँ बिहार पहुँच गए हैं, मधुबनी बिहार। वहाँ से देखे कौन याद कर रहा है आकाशवाणी अयोध्या को। जी नाम बताइए अपना।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नाम बता दीजिए।
1: हम साबिर परवाना बोल रहे हैं, नाहरमन टोला जिला मधुबनी बिहार से।
0: इतनी दूर से आप आकाशवाणी अयोध्या को सुन रहे हैं, पहली बार आपने कब सुना था हमारा रेडियो?
1: हम तो हमेशा सुनते ही रहते थे, जब से लॉकडाउन लगा तब से। आप यहाँ से फरमाइशी प्रोग्राम मैंने बंद भी हो गया, तब से पहली बार लगा है।
0: अच्छा नहीं, जब जब
1: 10 साल के बाद
0: जब मोबाइल ऐप पर न्यूज ऑन एयर पर नहीं आया था तब भी आप वहाँ पे सुनते थे?
1: जी हमारे दोस्त है ना ये, तो वो लोग जैसे मेवालाल यादव
0: जी जी जी जी जी जी
1: वो सब मैंने सुनवाते थे।
0: और एक मऊ के भी बहुत ही पुराने श्रोता है, वो आकाशवाणी अयोध्या यहाँ घूम कर भी गए हैं, देख कर गए हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझको।
1: राजेंद्र यादव भारती जी।
0: हाँ राजेंद्र यादव भारती जी। हाँ जी जी। तो पहले क्या होता था कि जब मोबाइल ऐप पर रेडियो नहीं आया था तो लोग क्या करते थे, अपने मोबाइल से ही वो रिकॉर्डिंग सुनवा दिया करते थे दूर दूर तक।
1: जी जी जी।
0: लोगों ने टेक्निक इजाद कर ली थी उस समय। तो आप करते क्या वहाँ पे मधुबनी बिहार में?
1: हम तो सर गांव में आते हैं तो अपना खेती बाड़ी जब समाप्त हो जाता है तो दिल्ली में हम गाड़ी चलाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो आजकल ये आप मधुबनी बिहार आए हुए हैं क्या?
1: जी जी।
0: चलिए साबिर जी, गाना कौन सा सुनवा दे आपको इस प्रोग्राम में आज?
1: आज सूरज फिल्म का गाना सुना दीजिए, बहारों फूल बरसा हूं मेरा महबूब आया।
0: क्या बात है, मोहम्मद रफी ने भी एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं, उनकी भी आवाज का कोई जवाब नहीं है कि नहीं। चलिए साबिर परवाना जी, आपका गाना पहुंच रहा है।
1: नमस्कार।

0: रेडियो आकाशवाणी अयोध्या से गुंजा दिया जाए। जी बताइए अपना नाम। जी
1: जी रीता चौहान बोल रहे सर।
0: रीता नमस्ते जी। रीता चौहान जी क्या हाल चाल है? बढ़िया हैं?
1: बढ़िया है सर, बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? क्योंकि गर्मी पड़ेगी तभी तो बरसात अच्छी लगेगी।
1: पड़ना चाहिए कि पूरे पसीने से पैर तक मतलब चप्पल भी चिपचिपा जा रहे हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, देखिए कुदरत ने सब ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ना, पसीना इसलिए निकलता है वो टेम्परेचर से, बॉडी जो है बॉडी को टेम्परेचर ठीक हो जाता है उससे पसीना निकलता है। तो
1: काम भी तो ऐसे ऊपर लगा है तीसरी मंजिले पे ना।
0: अच्छा हाँ, आप काम भी करती हैं, मेहनत वाला मकान वकान बनाती हैं आप। तो इस समय कहाँ पर है? इस समय गाँव में है की कहाँ पर है इस समय आप?
1: अरे इस समय वहाँ उतरू आते हैं नाका बाईपास के पास।
0: अच्छा अच्छा, तो घर आपका कहाँ है?
1: हमारा घर है सर चंदीपुर लगारा तहसील बीकापुर पड़ता है।
0: अच्छा, बीकापुर साइड पर आपका घर है, ठीक है, बढ़िया है। तो आज गाना आपको कौन सा सुनवाए हम?
1: हमको सर सुनवा दीजिए जिगर फिल्म का।
0: चलिए जिगर फिल्म का गाना हम आपको सुनवाते हैं। और क्या हो रहा है आजकल?
1: आजकल सर बस वही हो रहा है, मसाला बनाओ ईंटा देव।
0: हाँ अच्छा ये बताइए कभी
1: डली गई है।
0: अच्छा ये बताइए कभी कभी मसाला बनाते समय अगर पानी ज्यादा हो गया तो फिर क्या होता है?
1: निकाल दिया जाता है।
0: मिस्त्री नाराज तो नहीं होता है कि ये क्या कर दिया?
1: लेते हैं जब सूखा हो जाता है, मजे सूखा हो जाता है पानी, मतलब छत खींच लेता है, छत के ऊपर बन रहा तो थोड़ा थोड़ा डाल के उसी में मिला देते हैं।
0: हाँ, क्योंकि मसाला अगर बहुत पतला हो जाएगा तो दीवार से चिपकेगा नहीं फिर वो। तो चलिए इसमें
1: पानी पहले से निकाल लिया जाता है, मालूम चल जाता है पानी ज्यादा हो गया तो पहले निकाल लिया जाता है।
0: बिल्कुल वही आटे वाला हिसाब से आटा गूंथा जाता है, तो उसमें पानी ज्यादा हो जाए तो थोड़ा सा सूखा आटा मिला दीजिए, ठीक हो जाता है।
1: हाँ हाँ सर, बस वही होता है।
0: चलिए
1: ज्यादा गीला हो जाए तो सूखा बना के डालना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो रीता चौहान जी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, गाना आपका जिगर का पहुंच रहा है आपके पास।
1: जी सर, हमारे बहुत मतलब मिलने वाली सहेली और मतलब ऐसे भी कुछ लेबर दादा वादा है ना, वो
0: नाम ले लीजिए, सबको याद कर लीजिए, नाम ले लीजिए सबका।
1: अरे वो बहन है हमारी बहुत दूर रहती है, मांगू पुरवा है ना इधर।
0: अच्छा,
1: क्या बोलते हैं मामतपुर के आगे।
0: अच्छा,
1: वहाँ सुनती है वो, तो कहती है दीदी कभी कभी फोन लगाती है, आता आते हैं तो हम सुनते हैं जब आता है तो फोन।
0: हाँ देखिए ये चीज
1: लगाती है तो लगता ही नहीं उनका, लीड लगा के सुनती है मोबाइल में।
0: चलिए ठीक है, अगर
1: लगा तो लगता ही नहीं उनका।
0: तो आज आपकी कॉल लग गई, आपने उनको याद कर लिया, आपकी आवाज उन तक पहुँच गई।
1: हाँ सर
0: शुक्रिया जी। रीता चौहान जी गाना सुनिए। हाँ कुछ कह रही है और कुछ?
1: जी सर कुछ नहीं कह रहे, अब बाद में फिर कॉल करेंगे कभी तो बताएंगे।
0: हाँ क्योंकि बाकी लोग
1: रहता है। अब
0: जी, जी,
1: सर
0: जी जी
1: फिर
0: शुक्रिया
1: जुड़े
0: जी।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
2: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
3: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
0: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जी हाँ, 10 बजे के आसपास हम पहुंच चुके हैं। आधा सफर जी हाँ तय हो चुका है इस प्रोग्राम का, और अब 7376 80 40 90 नंबर को मिलाकर जी कौन पहुंच गया, नाम बताइए।
6: नमस्ते सर, चांदनी बोल रही है गोंडा से।
2: चांदनी गोंडा से बोल रही हैं, और गाना कौन सा सुनवाए चांदनी को?
6: सर हम आम म्यूजिक का गाना सुनेंगे, हमारे बात तुम्हें अपना बनाने कौन आएगा।
2: गाना तो बड़ा दमदार निकाला है आपने, ये गाना पहले हम सुनवाते थे बहुत बहुत दिन, मौके नहीं मिलता सुनवाने का, क्या किया जाए।
6: इसीलिए तो आप सुनवा नहीं रहे थे ना, इसीलिए आज हमने सोच लिया था कि आप आएंगे तो ये गाना सुनेंगे।
2: क्योंकि हम लोग का सारा टाइम हमारे लिसनर्स ने ले लिया फरमाइशी प्रोग्राम में, सुबह भी फरमाइशी, दोपहर में भी फरमाइशी, रात में फरमाइशी।
6: ये गाना आपका सबसे फेवरेट था और हमारा भी था।
2: हाँ, ये गाना चलिए सुना जाएगा, चाहे झलक के रूप में सुना जाए लेकिन सुना तो जाएगा। और बताइए क्या हो रहा है, बढ़िया है वहाँ पर मौसम, ठीक ठाक है? खबर ये भी हाँ, खबर ये भी मिली है कि बंगाल के आसपास जो है मानसून पहुंच रहा है धीरे धीरे, और कुछ दिन में वो यहाँ भी पहुंच जाएगा बारिश लेकर बादलों को। है ना, तो देखिए एक चीज और होती है ना कि अगर आदमी ने दुख नहीं देखा तो सुख का एहसास नहीं होता है, गम है तो खुशियां भी हैं, तो
6: उसी हाँ। अगर कभी कहीं गम है तो कहीं खुशी है,
2: हाँ।
6: ये तो चलता रहता है, जैसे हमारे जीवन में कहीं गम है कहीं खुशी है, वैसे प्रकृति के साथ भी है।
2: तो ये बताओ, जो हम लोग गर्मी गर्मी बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं कि अच्छा कर रहे हैं, नहीं अच्छा कर रहे हैं ना।
6: नहीं, ये तो गलत बात है।
2: सुनो सुनो,
6: कभी नहीं चिल्लाते हैं।
2: अगर गर्मी नहीं होगी तो आम नहीं पकेगा, आम नहीं पकेगा तो आम टपकेगा नहीं, टपकेगा नहीं तो खाओगे कैसे।
6: गर्मी में आम खाने में तो मजा आता है।
2: हाँ, कुछ चीजें हैं जो गर्मी में ही जो है बढ़िया लगती है, दही की लस्सी पीजिए, सत्तू घोल के पीजिए।
6: जैसे मौसमी फल है तो गर्मी में आम अच्छे लगते हैं, ठंडी में ऐसे फल हैं जो हमें मिलते हैं, तो हर मौसम का अपना अपना अंदाज होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, खरबूजे है एक से एक बढ़िया। तो गर्मी नहीं पड़ेगी ना तो फिर बरसात अच्छी नहीं लगेगी।
6: गर्मियों में खरबूजे ये सब ज्यादा खाने को मिलता है।
2: हाँ, लेकिन अब सब बड़े दूसरे ढंग के आ गए हैं, वो पहले जो देसी आते थे वो ज्यादा अच्छे लगते थे खाने में।
6: नहीं सर, हमारे यहाँ तो उगाया जाता है।
2: हाँ, एक जौनपुरी खरबूजा आता था पहले, अब तो सफेद सफेद खरबूजे आ रहे हैं, ऊपर से बिल्कुल पत्थर होते हैं, अंदर से काटिए तो वो भी दांत से कटते नहीं जल्दी। चलिए गाना हम आपको सुनाए, बातें बहुत हो गई चांदनी, आपका गाना ये रहा आपके पास।
6: ओके,

0: और अब हेलो अयोध्या में जी, कोई और भी मेहमान आना चाह रहा है तो उनको हम रोकेंगे नहीं जी, बताइए अपना नाम।
1: अनुष्का।
0: अनुष्का कहाँ से कॉल कर रही हैं आप?
1: चांदपुर अयोध्या से।
0: चांदपुर अयोध्या से। अनुष्का मनचंदा को भी जानती है कि नहीं आप? अरे अनुष्का एक हीरोइन भी हुई हैं बॉलीवुड में।
1: हाँ जानते हैं।
0: मेरे ख्याल से उन्होंने शादी की है ना उनके साथ विराट कोहली के साथ अनुष्का ने। तो अनुष्का क्या करती हैं आप बताइए, पढ़ती हैं क्या करती हैं?
1: पढ़ते हैं भैया।
0: किस क्लास में पहुंची अभी?
1: 11th क्लास में।
0: 11th में। उसके बाद फिर आप इंटर में, इंटर के बाद आप फिर कॉलेज में पहुंच जाएंगी।
1: जी।
0: तो ये बताइए कि आपको गाना आज कौन सा सुनवाए?
1: तेरा मेरा प्यार लगन।
0: हाँ, लेकिन वो गाना जो लाइन आप बता रही है ना, पहले आपने फिल्म का नाम ही नहीं बताया था, तो ये गाना मुझको बहुत पसंद था इसलिए मैंने वो गाना तुरंत मुद्दत से निकाल लिया। उस गाने की लाइन है प्यार हमारा अमर रहेगा। कंप्यूटर में ये नहीं,
1: हाँ
0: कंप्यूटर में ये लिखा हुआ है ना?
1: जी हाँ।
0: अच्छा अगली बार जब आप आएंगे ना तो
1: जी।
0: हम अपने कंप्यूटर का नाम एक रखना चाहते हैं बहुत बढ़िया सा, गोलू मोलू भोलू, क्योंकि हम लोग की मदद करता है, बहुत हेल्प करता है कंप्यूटर, वही बताता है सब गाने। तो अगली बार कोई नाम बढ़िया सा सोच के आइएगा, और भी देखते हैं अगर कोई बता देता है तो फिर इसका नाम रख दिया, हम रख देंगे अपने प्रोग्राम में, है ना?
1: ओके।
0: तो अनुष्का को गाना सुनवाने जा रहे हैं हम ये वाला मुद्दत फिल्म का। कॉल के लिए शुक्रिया आपका।

0: हर किसी को आने की तमन्ना रहती है इस प्रोग्राम में हेलो अयोध्या में, कि मेरी भी आवाज गूंज जाए आकाशवाणी अयोध्या के हेलो अयोध्या प्रोग्राम में। किसकी आवाज गूंजने जा रही जी, नाम बताइए अपना, कहाँ से जी? आप रेडियो पर आ चुके हैं, आपकी कॉल लगी है, नाम बताइए वहां से अपना।
1: किशन जी।
0: किशन जी क्या करते हैं, आपने कहाँ से कॉल लगाई है?
1: ये सादतगंज।
0: सादतगंज से। अभी कोई लाल कुर्ती की बात कर रहा था, लाल कुर्ती से क्या कनेक्शन है आपका?
1: अरे वो जमाद है।
0: अच्छा, क्या नाम बताया था उन्होंने?
1: विजय आनंद।
0: विजय आनंद
1: जी।
0: तो उनसे पूछिए, उन्होंने हमको देखा हुआ है क्या कभी? अच्छा अच्छा, तो आप क्या कर
1: देखे हैं? रोहित के बगल वाला घर है।
0: रोहित? अच्छा, रोहित के बगल वाला घर है।
1: विजय आनंद बम्बे से थे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी वाह, जी जी बिल्कुल, हमारी वहाँ दुकान भी थी, तो अब तो मैं दुकान वहाँ करता नहीं हूँ।
1: वो तो है, हम तो जान रहे हैं पिताजी आप जब से।
0: जी जी जी जी,
1: अब तो आना जाना भी आपका बंद है।
0: जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं वहाँ पर सादतगंज में?
1: हम तो सर्विस कर रहे हैं।
0: अच्छा, कहाँ, किस चीज में सर्विस कर रहे हैं?
1: पंचायत विभाग में।
0: अच्छा अच्छा, तो आज गाना आपको लावारिस से हम कोई भी सुनवा दें?
1: जी जी, कोई सा लावारिस कर रहे हैं।
0: चलिए, कॉल करने के लिए शुक्रिया। किसी को याद करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, नाम हम लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, हम गाना सुनवा रहे हैं आपका।

0: इतना अच्छा चल रहा था तो इसको फेड आउट करने का मन ही नहीं कर रहा था कि गाना लग रहा था कि पूरा चल जाए, लेकिन यहाँ कॉल भी तो किसी की लेनी है ना जी। कॉल लगातार आपकी आ रही है और टाइम भी कम बचा है जी। नाम बताइए अपना।
1: आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, आसमान से तोड़ के एक तारा दिया है, मेरी तन्हाइयों का सहारा दिया है, मेरी किस्मत भी मुझसे नाच करती होगी क्योंकि ऊपर वाले नहीं दोस्त मुझको इतना प्यारा दिया है, आकाशवाणी का दोस्त इतना प्यारा दिया है। नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप इतनी बढ़िया बढ़िया लाइनें लिखती हैं तो कोई किताब छपी अभी आपकी की नहीं?
1: नहीं सर, किताब तो नहीं छपवाए, बस ऐसे ही लिखते हैं थोड़ा बहुत।
0: नहीं तो शायरी तो वही लोग करते हैं ना कि जिनकी फिर किताबें भी छपती हैं है ना
1: जी सर। मैं थोड़ा बहुत शौक है तो ऐसे कर लेते, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं शायरी, छपाने उपाने का तो अभी कोई इरादा नहीं है।
0: हाँ तो आपका नाम हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आपकी आवाज से सब लोग पहचान रहे हैं आपको।
1: जी सर, नाम बता दूं?
0: अब बताइए, मैंने रोका थोड़ी है।
1: अनु पांडे बात कर रही हूँ गोंडा से।
0: चलिए ठीक है, गाना कौन सा सुनाया जाए आपको?
1: सर मुझको गाना सुनना है दोस्ताना मूवी से, और एक बात, आज आकाशवाणी का जन्मदिन है तो मैं उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी को देना चाहूंगी, और आकाशवाणी हम लोगों की जिंदगी में इतना मतलब गुरु है हमारा कह लीजिए तो, सब कुछ है जो हमको बहुत सारी चीजें बहुत कुछ सिखाया है।
0: लेकिन एक आकाशवाणी को आप भूल रही है।
1: नहीं सर, आकाशवाणी को भूल रही हूँ सर। कौन सी आकाशवाणी?
0: इसका मतलब आपने प्रोग्राम शुरू से नहीं सुना आप आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को भूल रही हैं।
1: अरे उसकी तो भी बारी आ ही रही है उसकी।
0: अरे बारी के आप तो बस 4-6 दिन बाकी हैं, इसी महीने में 17 जून को जो है हम लोग 34वें वर्ष में पहुंच जाएंगे।
1: हाँ सर, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और एक बात, मैं पिछले मतलब 22-23 साल से आकाशवाणी अयोध्या से जुड़ी हूँ और आकाशवाणी लखनऊ से।
0: हाँ बहुत से श्रोता जुड़े हैं, और देखिए कईयों की तो शादियां भी हो गए, बच्चे भी उनके यहाँ हो गए, और बड़े बड़े शादियां उन बच्चों की भी हो गई, लेकिन उन्होंने आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या को सुनना नहीं छोड़ा, सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए।
1: जी सर, मैं भी जब से दुनिया में आई हूँ तब से आकाशवाणी अयोध्या सुन रही हूँ, मतलब दुनिया में थोड़ा आने के बाद से।
0: चलिए,
1: और मुझे आकाशवाणी अयोध्या के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं जो इससे बढ़ के एक होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी भी रेडियो मतलब आकाशवाणी को सबसे ज्यादा अगर सुनती हूँ तो वो है आकाशवाणी अयोध्या।
0: अच्छा आखिरी बात बताइए फिर, आपका गाना प्ले करें, एक साल से आपको किस प्रोग्राम का इंतजार था जो अभी तक शुरू नहीं हुआ? वादे तो बहुत किए जाते थे पत्र मिला में।
1: सर एक हो गया जागो जिंदगी और एक फिल्मी फ्राइडे,
0: और आपकी बात प्रोग्राम भी तो साप्ताहिक नहीं हुआ।
1: हाँ सर, लेकिन ये तो मतलब आ ही रहा है, महीने में 2-3 बार आ जा रहा है, लेकिन फिल्मी फ्राइडे हो गया, जागो जिंदगी हो गया तो इनकी बार नहीं आता है।
0: और पहले गीत बाहर प्रोग्राम होता था डेली, अनाउंसर के पसंद के गाने बजते थे सुबह 9:30 बजे, वो अच्छे नहीं लगते थे क्या?
1: सर वो तो बहुत अच्छे लगते थे, और मैंने आपकी बात में बहुत सब लिखा भी,
0: बस वही है
1: होना चाहिए अनाउंसर के पसंद।
0: इसकी कसक हर एक को है, श्रोता को भी है, अनाउंसर को भी है, हर किसी के दिल में ये कसक रह गई, प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाए
1: तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ा सा निराश भी हूँ।
0: चलिए सब टाइम कट जाता है ऐसे ही है ना। हाँ। कॉल के लिए शुक्रिया, आपका गाना आपका पहुंच गया।

0: तो हेलो अयोध्या का ये सुरीला सफर ही ऐसा है कि इसमें हर कोई सवार होना चाहता है और हर किसी की तमन्ना होती है उसकी भी बारी आ जाए इस प्रोग्राम में। हम भी किसी को छोड़ते नहीं हैं और आपकी दिली तमन्ना को पूरा करते हैं यहाँ पर। अब मेरे पास जी किसकी कॉल आई है, आइए उनसे भी बात की जाए। आपका नाम क्या है सर, बताइए। आप रेडियो पर आ चुके, अपना नाम बताइए, बोलिए वहाँ से।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना प्यारा सा नाम बता दीजिए, क्या रखा घर वालों ने?
1: संतोष कुमार मौर्य।
0: संतोष कुमार मौर्य जी, क्या करते हैं वहाँ पर मिल्कीपुर में?
1: कुछ नहीं, खेती बाड़ी काम करते हैं।
0: तो ये क्यों कह रहे हैं कुछ नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ बड़ा काम कर रहे हैं।
1: जी जी जी,
0: है ना। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं ना यहाँ पर कि क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अरे खाना तो खाते हैं ना, सोते हैं कि नहीं सोते हैं?
1: हाँ, ये तो बात है।
0: तो बस वही चीज है। तो गाना किस फिल्म का सुनना चाहते हैं?
1: कामचोर फिल्म का सुना।
0: कामचोर में तो गाने बड़े बढ़िया बढ़िया है। एक तो गाना उसमें है, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तो कौन सा सुनवाएं आपको? अच्छा, तुझ संग प्रीत वाला गाना सुनेंगे, इसमें भी किशोर कुमार और लता की आवाज में। तो आपका शुक्रिया कॉल करने के लिए, फिर से आइएगा हमारे प्रोग्राम में, ठीक है? और ये हमारा प्रोग्राम नहीं, आप ही का प्रोग्राम है, मुँह से गलत निकल गया मुझसे। प्रोग्राम आप ही का है। शुक्रिया।

0: हेलो अयोध्या का, ये सफर बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा वक्त और बचा हमारे पास। और अब किसकी कॉल यहाँ पर पहुँच गई, नाम बताइए जी अपना।
1: सदानंद।
0: सदानंद जी, कहाँ से ये आवाज आ रही है मुझको?
1: हाँ सर, आ रही है।
0: नहीं, मेरी आवाज तो आप तक पहुँच रही है, आपकी आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ पे रहते हैं आप?
1: सर हम ग्राम अवन फसरवा पोस्ट बनके गाँव जिला अयोध्या से बोल रहे हैं।
0: तो बनके गाँव ये किस साइड में है, सुल्तानपुर रोड पर है की अकबरपुर रोड पर है?
1: नहीं, ये थानापुरा कलंदर के पास है।
0: ओहो, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और क्या करते हैं वहाँ, खेती बाड़ी करते हैं?
1: हाँ जी सर।
0: तो हम अगर आपके गांव आए तो हमको क्या खिलाएंगे आप?
1: सर आप जो कहेंगे वही खिलाएंगे।
0: नहीं नहीं, ये क्या हुई, आपका जो मन करेगा जो खिला देंगे, हम खुशी से खा लेंगे।
1: जी जी जी।
0: पहले हम लोग सर्वे करने निकलते थे गांवों में रिकॉर्डिंग करने के लिए फुलवारी बच्चों के कार्यक्रम की, तो मैंने बहुत से 20 किलोमीटर के अंदर बहुत से गांवों में मैंने घूमा हुआ है ना
1: जी।
0: तो आपको हम भोजपुरी गाना सुनवा

0: हमारे बहुत बढ़िया कॉल कर रहे,
1: नाम नहीं याद आ रहा फिल्म का।
0: हाँ तो अगली बार आइएगा ना तो एक डायरी बनाइए, उसके ऊपर फिल्म का नाम नोट कर लीजिए, वही बोला कीजिए यहाँ पर।
1: ओ प्यार करे सर, क्या बताएं।
0: थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, एक डायरी बना लीजिए, फिल्मों के नाम लिखिए, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर जो है ना वो कहते हैं कि फिल्म का नाम पहले पूछोगे तभी हम गाना देंगे आपको, और कंप्यूटर का नाम भी हम रखना चाहते हैं, तो अगली बार आएंगे तो आप मुझे कंप्यूटर का बढ़िया सा नाम बताइएगा।

0: अब एक ऐसी कॉल आई है यहाँ पर जिनकी कॉल मेरे पिछले प्रोग्राम में कई बार लगी और कई बार ड्रॉप हो गई, वो ऑनियर नहीं हो पाई। देखें आज ये कॉल ऑनियर होने जा रही है। जी कौन है बताइए वहाँ से नाम अपना।
1: जी सर जी नमस्ते, अजिता आवाज़ बस्ती जिले से।
0: तो अजिता अब आप ही बता दीजिए कि आप कितनी बार ट्राई कर रही थी मेरे प्रोग्राम में और कॉल लगने के बाद भी कट जा रही थी।
1: सर जी बहुत बार ट्राई कर
0: रहे थे ना इत्तेफाक था
1: जी सर।
0: तो आज भी बिल्कुल लास्ट में जाके आपकी कॉल लगी है। तो दिल है कि मानता नहीं से कौन सा गाना अजिता को सुनवाया जाए। हाँ पहले ही गाना है कंप्यूटर पे नंबर वन पर ये गाना है। वैसे गाने इसके बहुत हैं, 1 2 3 4 5 करीब 11-12 गाने हैं हमारे इस फिल्म के। और क्या हो रहा है घर? हम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास आपसे बातें कर रहे हैं। और क्या हो रहा है आजकल गांव में? अच्छा अच्छा गर्मी तो देखिए पड़ेगी। गर्मी नहीं पड़ेगी तो फिर बरसात का मजा भी तो नहीं आएगा, ये भी तो बात है ना
1: जी। जी सर।
0: तो अजिता
1: और आज आपकी कॉल लखनऊ में सुनी, बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने बातें किया।
0: बहुत लोगों ने मेरी आवाज आज सुन ली लखनऊ से भी है, मुझे नहीं पता था।
1: हम भी सुन लिए सर जी।
0: क्योंकि वहाँ की जो एंकर थी ना दीप्ति जोशी, वो भी वहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम पेश करती हैं और दिल खोल के बातें करती हैं वो, है ना।
1: उनकी कसौटी सर बहुत अच्छी रहती है।
0: जी जी, तो हर कोई उनसे बात करना चाहता है, मेरा भी मन करता है तो मैं भी बात करता हूँ वहाँ पर।
1: सर हम भी मिलाते हैं, कॉल लगती ही नहीं है।
0: और मेरी उनसे बात जनवरी के बाद अब जाके कॉल लगी है, एक बार जनवरी में लगी थी इसी साल के आगाज में, है ना।
1: हाँ सर।
0: चलिए तो अजिता को गाना सुनवा रहे हैं। और कौन कौन सुन रहा है प्रोग्राम? मम्मी सुन रही होंगी आपके प्रोग्राम?
1: हाँ सर, मम्मी है, भैया हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो भैया का नाम बता दीजिए।
1: सर भैया का नाम है आशीष अभय अकुल, दीदी का नाम है जया।
0: ठीक है, सब मिलकर सुनिए गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी सर। जी सर।

तो आज के इस प्रोग्राम में कंट्रोल रूम से मेरे साथ थे स्वप्निल मिश्रा, और आपका रेडियो मित्र अमरजीत बस यही कहता है कि आप हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे

ये था लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, जिसमें श्रोता सीधे नंबर मिलाकर अपनी पसंद के गाने सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज़ से और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर आप सुन रहे थे। 10:30 हो चुके हैं, अब से लेकर 11 बजे तक विविध भारती मुंबई की राष्ट्रीय सेवा से आप सुनेंगे ढलती जाए रात प्रोग्राम में कुछ सदाबहार पुराने गाने।

0: भारती की राष्ट्रीय सेवा मुंबई से अभी आपने पुराने गाने सुने। प्रोग्राम था ढलती जाए रात। विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे सुबह 6:05 से। यह आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार होंगे, पहले हिंदी में, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे

0: आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।